0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे।

0: जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उल्ला का ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजोहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartuhari Mehtab has been appointed as a chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from Lower House and 10 from the Upper House. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta, Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of the Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Ruti has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by Congress MP Shaptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. Niti Aayog member Rajiv Gauba has emphasized the need for regulatory frameworks to evolve alongside a rapidly changing geopolitical, technological and economic environment.

0: लोकसभाध्यक्षेण ओमबिरला इत्यनेन मन्त्रालयानुगुणं विभिन्नानां संसदीयसमितीनां पुनर्निर्माणं विहितम्। भाजपासांसदः भर्तृहरिमहताबः वित्तसमित्याः, कांग्रेससांसदः शशिथरूरः विदेशकार्यसमित्याः, सुधीरगुप्तः च रेलसमित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्ताः। तथैव चरणजीतसिंहचन्नी कृषिपशुपालनखाद्यप्रसंस्करणसमित्याः, राधामोहनसिंहः रक्षासमित्याः, राजीवप्रतापरूढी जलसंसाधनसमित्याः, सप्तगिरि उल्का ग्रामीणविकासपञ्चायतीराजसमित्याः, निशिकान्तदुबे च सञ्चारसूचनाप्रौद्योगिकीसमित्याः अध्यक्षपदम् अलङ्करिष्यन्ति। अद्य नवदेहल्यां पञ्चमकौटिल्यार्थिकसम्मेलनं सम्बोधयन्ती वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामन् न्यगादीत् यत् गतदशके वित्तीयसंयमस्य आधारभूतसंरचनानिवेशस्य, बैंकिंग परिष्काराणां, वस्तुसेवाकरस्य अथ श्रमसंहितानां सुदृढक्रियान्वयनेन भारतस्य आर्थिकस्थैर्यम् अतीव सुदृढम् अभवत्। वित्तमन्त्री अब्रवीत् यत् विगत चतुर्षु वर्षेषु वैश्विक संकटेषु सत्सु अपि भारतस्य आर्थिक मूलतत्त्वानि सर्वथा अक्षुण्णानि सन्ति। इस्राइल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहु वर्येण आगामि स्वातन्त्र्य महोत्सवे मंगलदीप प्रज्वालयितुं भारतीय वैमानिकः कैप्टन स्मिथ मच्छारः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सगौरवम् आहूतौ। दूरवाणी सम्भाषणवेलायां नेतन्याहु महोदयेन कैप्टन मच्छारस्य वीरतायाः भूरिशः प्रशंसा विहिता। स च भारत इज़राइल देशयोः धीरनायकत्वेन उद्घोषितः। परम्परागतरूपेण एतत् मंगलज्वाला प्रज्वालनस्य गौरवं केवलं इज़राइल नागरिकेभ्यः एव आरक्षितं भवति, येन एतत् आमन्त्रणम् अतीव दुर्लभं विशिष्टं च मन्यते। जापान देशस्य नागोया नगरस्य क्रीडांगणे अद्य सायंकाले षड्वादने आईची नागोया एशियाई क्रीडायाः भव्यं समापनं भविष्यति इति वार्ताः।
1: நேரம் 7 மணி, ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையம்.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்ட் 100.1.
1: நேயர்களினி 100.1 எஃப்எம் கோல்டில் இன்று இடம்பெறவுள்ள நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய விவரம் அறிவோம். நீங்களே இன்று காலை 7:15 திரையிசை, 7:30 ஆர்ட்ஸ் அவேரே செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல், 8:30 திரைகானம் கேட்டு ரசிக்கலாம், 9 மணிக்கு இசை பெட்டகம், டி கே கோவிந்தராவ் அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம், எம் ஏ கிருஷ்ணசுவாமி அவர்கள் வயலின், குருவாயூர் துரை அவர்கள் மிருதங்கம், டி வி வாசன் அவர்கள் கட்டம், 10:10 விஸ்வதர்ப்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ், 10:30 சுகமான ராகங்கள், 11:10 திரைகானம் கேட்டு ரசிக்கலாம், 11:30 மல்லேபுதண்டா தெலுங்கு நிகழ்ச்சியில் நுங்கம்பாக்கம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா தெலுங்கு ஆரம்பப்பள்ளி மாணவர்கள் வழங்கும் பல்சுவை நிகழ்ச்சி, நண்பகல் 12 மணிக்கு நிகழ்ச்சி நிலை தொடர்ந்து திரைகானம் கேட்கலாம், 12:40 மெல்லிசை. பிற்பகல் 1:10 இசை மலர். நேர்களை இன்றைய இசை மலர் நிகழ்ச்சியில் உஷா கிருஷ்ணன் அவர்களின் பீன இசை இடம்பெறும், தஞ்சாவூர் எஸ் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருதங்கம், 2:30 முதல் 4 மணி வரை திரைகானம் கேட்கலாம், 4:10 தேநீர் நேரம், 4:20 எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ், 4:25 ரோஸ்க சமாச்சார், 4:30 பரிக்ரமா செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல், மாலை 5 மணிக்கு அரங்கிசையில் ஸ்ரீவித்யா விஸ்வநாத் அவர்களின் பீன இசை இடம்பெற கேட்கலாம், ஆர் ரமேஷ் அவர்கள் மிருதங்கம், மடிப்பாக்கம் ஏ முரளி அவர்கள் கட்டம், 6:05 நிகழ்ச்சி நிரல், 6:10 விஷ்லேஷன், 6:30 11:10 மார்க்கெட் மந்த்ரி.

0: नमस्कार श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कभी ये नहीं सोचता कि मिट्टी कितनी सख्त है। वे बस अपनी जड़ें फैलाते रहता है, धीरे धीरे पर लगातार। ना उसे जल्दी होती है, ना ही वो थकता है, क्योंकि उसे पता है एक दिन वही बीज एक छायादार पेड़ बनकर खड़ा होगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर तुरंत नतीजे चाहते हैं और जब वे नहीं मिलते तो हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें सच में मायने रखती हैं, वो धीरे धीरे बनती हैं, चाहे वो कोई सपना हो, आदत हो या कोई रिश्ता। जरूरत बस इतनी है कि हम अपनी कोशिशें जारी रखें, एक ना एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसी धैर्य और उम्मीद के साथ समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। हेलो सायरा।
1: Hello Vaishnavi, Namaskar, Radhab, and a very warm welcome to all our listeners. And Vaishnavi has opened the show with very, very thoughtful and motivational lines. So I'm sure that everybody has got their Sunday dose of positivity. Yes, we bring you another fresh episode of Aaj Savere, where we bring you an amalgamation of not just news, but also some very interesting stories from your own metro cities. Dekhenge wahan kya khas chal raha hai. And of course, the last segment in which we remember some of the personalities who either have their birthday, birth anniversaries or death anniversaries. All of that in the next half an hour. Let's start with the headlines, Vaishnavi.
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: The 19th प्रवासी भारतीय दिवस

0: PD convention will be held from 7th to 9th January next year at Kolkata in West Bengal. The convention will be organized by the Ministry of External Affairs in partnership with the West Bengal government. The PBD convention will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu will confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards and preside over the valedictory session. The convention will also have a youth PBD segment. The event will bring together Indian diaspora members, young diaspora leaders, entrepreneurs, professionals, academics, innovators and other stakeholders from across the world.
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, वहीं उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे।
0: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephonic conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family. Mr. Netanyahu noted that the honor of lighting the ceremonial flame is traditionally reserved for Israeli citizens, making the invitation a rare and significant recognition of Captain Machar's courage and service.
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करा है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है।
0: Ethiopian Federal Forces have reportedly retaken the airport in Mekelle, the capital of the northern Tigray region, reversing a takeover by Tigrayan fighters that led to the suspension of commercial flights last month. Local media reported that severe disruptions to internet and mobile phone networks have made it difficult to gather and verify information from Tigray. Meanwhile, neither the Ethiopian government nor the Tigray People's Liberation Front had publicly commented on reports of the airport's recapture.
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: जी वैष्णवी, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए खेलों में कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके अलावा अगर वैष्णवी बात करें क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 48 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो वैष्णवी, ये थे अब तक के कुछ मुख्य खेल समाचार।
1: धन्यवाद मुकेश। श्रोताओ, अब जरा अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। भारत सरकार की रिफॉर्म उत्सव पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसी

0: एनआरटीसी ने छात्रों को नमो भारत से परिचित कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्रों को नमो भारत के संचालन, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा संबंधी जरूरी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। छात्रों ने सरायका लेखा स्टेशन के कंट्रोल रूम का दौरा कर ट्रेन और स्टेशन के संचालन की आधुनिक व्यवस्थाओं को भी करीब से देखा। वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल रोहिणी सेक्टर 8 स्थित केंद्रीय विद्यालय में सेवा सेतु कैंप का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ तभी सार्थक है जब उसकी जानकारी और जरूरी सहायता आसानी से लोगों तक पहुंचे। सेवा सेतु कैंप में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक एजेंसियों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। यहां नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता मिलती है।
1: And now let's go to Chennai. The S-band Doppler weather radar at Chennai port is to be replaced next year. The radar has been working for more than 2 decades and it has been restored and will be kept operational till December this year. IMD Director General of Meteorology, Mrityunjay Mohapatra, said that an order for replacing the radar has been placed. The present order was imported from Germany and has been working since 2002. The S-band radar has a range of about 500 kilometers and is important for tracking cyclones and other weather systems, besides monitoring rain-bearing clouds. Another story coming in from Chennai. The Greater Chennai Corporation's Gender Policy Lab is conducting safety audits at its 417 schools to identify infrastructure gaps, assess physical and environmental risks, and recommend improvements. The exercise follows reports of shortcomings in some schools, including girls being asked to leave class during the periods. The audit, which began last month, assessed child protection systems and students' psychological safety too.
0: और चेन्नई से चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत को प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री गडकरी शनिवार को नागपुर में एशियन सिनेरियो ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सम्मेलन के एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वैकल्पिक और बेकार सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब तक सड़क निर्माण में लगभग 80 टन शहरी कचरे का इस्तेमाल कर चुका है।
1: Moving on to Bengaluru, Bengaluru Electricity Supply Company, BESCOM, has registered a profit of over 293 crore rupees for the year 2025-26. Karnataka Energy Minister K.J. George has informed that revenue collection improvement, efficient management of power procurement, reduction in finance cost and stronger financial discipline helped achieve this feat. He was speaking in Bengaluru after chairing the 144th BESCOM board meeting. He added that increasing revenue and controlling expenditure resulted in improving the financial performance last year.
0: और अब कोलकाता की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार विकास के साथ राष्ट्रवाद, देशभक्ति और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात उन्होंने राज्य के भारतीय संग्रहालय के एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राज्य में विकास और केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ उसकी खराब वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए काम करेगी। उन्होंने युवाओं में राष्ट्रवादी चेतना जगाने का आह्वान किया।
1: And now moving on to Hyderabad, Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy said Greater Hyderabad cannot develop through slogans alone. He said it needs full coordination among officials and scientific plans based on people's needs. Speaking to media after chairing the Hyderabad District Disha Committee meeting at CSIR IICT Darnaka, he said the city should be planned as one unit, even though district and corporation boundaries differ. He asked the collectors of Hyderabad and Mechal Malkajgiri, the GHMC and the three municipal commissioners in the Cyberabad area to work together.
0: सायर, आप महानगरों का मौसम का हाल श्रोताओं को बताते हैं।
1: बिल्कुल, शुरुआत की जाए दिल्ली से।
0: बिल्कुल, दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
1: And if you talk about-

0: are the southern cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. All three will have more or less similar weather conditions. Well, Chennai will have a generally cloudy sky and some light rain is also expected there. Temperatures will range between a minimum of 27 and maximum of 35 degrees Celsius. Bengaluru will also have a cloudy sky and again some light rain is expected. The minimum temperature was 21 while maximum may reach 31 degrees Celsius. Hyderabad will also have a partly cloudy sky and there's some possibility of thunder lightning over there. Temperatures are expected to hover between 23 and 33 degrees Celsius.
1: और अब बात करते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में सायरा।
0: बिल्कुल।
1: आज विश्व पशु कल्याण दिवस है और इस दिन का उद्देश्य जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना और उनके कल्याण, सुरक्षा और अधिकारों के बारे में जागरूकता करना है। और अगर भारत की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ भी पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम हमें हर इंसानों में जरूर दिखती ही है।
0: Absolutely, I think in our culture it's very, you know, it's a part of our culture, especially see, you know, the whole, it's, you know, worshipping the cow is symbolic because, you know, एक cow से आपको कितनी सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए like, you know, you pay respect to that animal. So it's a part of our culture. But nonetheless, a lot needs to be done because हम लोग कई बार देखते हैं कि वही गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको बस छोड़ दिया जाता है. Hey, you know, to fend on its own, that should not happen. But yes, definitely, I think today is the day when we remind ourselves of that.
1: बिल्कुल, और जैसा आपने कहा ही, तो श्रोताओं इतना जरूर याद रखिए कि हमारी संवेदनशीलता की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि हम इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि इससे भी होती है कि हम उन जीवों के प्रति कितने दयालु हैं जो अपनी तकलीफ शब्दों में नहीं कह सकते। और अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर आज की तारीख दर्ज है।
0: Yes, and let's start from the year 1582 when Pope Gregory the 13th introduced the Gregorian calendar in several countries. So October 4 was followed directly by October 15 to fix the calendar drift. So today was that day.
1: और मेक्सिको का पहला संघीय संविधान आज ही के दिन 1824 को लागू हुआ था। इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने देश को यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स के रूप में एक संघीय गणराज्य का आधिकारिक स्वरूप दिया।
0: That's right, on this day it became a republic. Also on this day in 1957, the Soviet Union launched Sputnik 1, the world's first artificial satellite, starting the space age.
1: और 1977 में आज ही के दिन तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महासभा के 32वें सत्र को हिंदी में संबोधित किया था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय नेता ने वैश्विक मंच पर हिंदी में अपनी बात रखी थी।
0: That's right. And now if we remember some of the personalities, तो इस पे शुरुआत किससे की जाए?
1: सबसे पहले बात करते हैं कस्तूरी बाई के बारे में। स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी सिर्फ बड़े नेताओं की कहानी नहीं है, इसके पीछे ऐसी अनेक महिलाओं का योगदान भी रहा जिन्होंने समाज सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। कस्तूरी बाई ऐसी ही एक महिला थी। आज कस्तूरी बाई की पुण्यतिथि है। वर्ष 1892 में जन्मी कस्तूरी बाई प्रसिद्ध कवि और स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी की बहन थी। राष्ट्रसेवी परिवार में पली बड़ी कस्तूरी बाई के मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। वे महिलाओं को संगठित करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के काम से जुड़ी रहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रियता इतनी महत्वपूर्ण थी कि वे महाकौशल क्षेत्र से जेल जाने वाली पहली महिलाओं में शामिल थीं। राष्ट्र सेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र से भी सम्मानित किया गया था।
0: That's right. Today we are also remembering Shyamji Krishna Varma, a revolutionary lawyer and a journalist who founded the Indian Home Rule Society, the India House, and the Indian Sociologist in London. A graduate of Balliol College, Krishna Varma was a noted scholar in Sanskrit and other Indian languages. He pursued a brief legal career in India and then served as the Diwan of a number of Indian princely states in India. He, however, had differences with the Crown authority and was dismissed following a supposed conspiracy of British colonial officials at Junagarh, and then he chose to return to England. An admirer of Swami Dayanand Saraswati's approach of cultural nationalism and of Herbert Spencer, Krishna Varma believed in Spencer's dictum, that is, resistance to aggression is not simply justified but imperative.

सारा, मुझे लगता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ भारत की धरती तक सीमित नहीं थी, विदेशों में रहकर भी कई भारतीयों ने स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। और ऐसे ही राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, एक महत्वपूर्ण नाम था जिनका, वो था श्याम जी कृष्ण वर्मा। और श्रोताओं को हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी शुरू की थी जिसके माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी विचारों को आवाज़ दी। वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल जैसे युवा राष्ट्रवादियों पर भी उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था।

अब हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की स्वर्णिम दौर की अभिनेत्री और नृत्यांगना संध्या शांताराम के बारे में। उनका असली नाम वैसे तो विजया देशमुख था। वे प्रसिद्ध फिल्मकार वी शांताराम की पत्नी थी और उनके निर्देशन में बनी कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय तथा नृत्य से अपनी अलग पहचान बनाई। संध्या को खास तौर पर झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और मराठी फिल्म पिंजरा के लिए याद किया जाता है। फिल्म पिंजरा में उनके अभिनय और नृत्य को खूब सराहा गया। वहीं नवरंग का लोकप्रिय गीत अरे जारे जा नरहरि नटखट उनके नृत्य की पहचान बन गया था। सारा अब इस गीत के बारे में बात हो ही रही है तो आइए श्रोताओं को सुनाते हैं।

अब हम बात करेंगे तेलुगु सिनेमा में ऐसी फिल्मों के निर्माता के बारे में जिन्होंने मनोरंजन के साथ संगीत, कला और मजबूत सामाजिक विषयों को भी महत्व दिया। हम बात कर रहे हैं इदिदा नागेश्वर राव के बारे में। उन्होंने पूर्णदेव मूवी क्रिएशंस की स्थापना की और लगभग एक दशक के अपने निर्माता जीवन में सिरी सिरी मूवा, शंकरा भरणम, सितारा, सागर संगमम, स्वाति मुथयम, स्वयं कृषि और स्वर कल्पना जैसी चर्चित फिल्मों का निर्माण किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में शंकरा भरणम को विशेष रूप से याद किया जाता है, जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को केंद्र में रखकर दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्म स्वाति मुथयम को 1986 की सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और निर्माता के रूप में इदिदा नागेश्वर राव को रजत कमल से सम्मानित किया गया। उनकी कई अन्य फिल्मों जैसे सिरी सिरी मूवा, स्वयं कृषि और शंकरा भरणम को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जबकि सितारा, सागर संगमम और अन्य फिल्मों को नंदी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

हिंदी साहित्य को समझने के लिए जिन नामों का उल्लेख सबसे पहले किया जाता है उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम प्रमुख है। आज ही के दिन 1984 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्मे रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, आलोचक और निबंधकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को केवल रचनाओं के आधार पर नहीं बल्कि उसके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ समझने की कोशिश की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत कृतियों में माना जाता है। उनकी अन्य चर्चित रचनाओं में चिंतामणि, रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और भ्रमर गीत सार शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाली साहित्य संगीत की दुनिया में अपनी सुरीली और भावपूर्ण आवाज से अलग पहचान बनाने वाली संध्या मुखर्जी, जिन्हें प्यार से गीताश्री भी कहा जाता था, का जन्म आज ही के दिन 1931 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बंगाली के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया। अपने लंबे करियर में उन्होंने 10,000 से अधिक गीत गाए। उन्होंने एसडी बर्मन, मदन मोहन, नौशाद, अनिल विश्वास और सलील चौधरी जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। संध्या मुखर्जी की आवाज में भावनाओं की गहराई और शास्त्रीय संगीत की मजबूत पकड़ सुनाई देती थी। उन्हें 1970 में फिल्म जय जय संतोषी माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्होंने वैसे तो कई हिंदी फिल्म के लिए अपने आवाज दी है, पर यहाँ पे हम आपको एक उनका खूबसूरत गीत सुनाना चाहेंगे।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज सवेर में आज की हमारी मुलाकात यहीं पूरी होती है। आप जहां भी रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और हर दिन की वो अपनी एक खूबसूरत याद बनाने की कोशिश कीजिए।
1: Stay tuned for coming up next is समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning, listeners. Have a great Sunday. Namaskar.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
2: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण

0: और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
3: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
4: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न

0: इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पिज़िशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल क्रिकेट से लेकर

0: हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Lok Sabha Speaker Om Birla reconstitutes several department-related parliamentary committees for 2026-27 term. Union Education Ministry approves 5 new centres of excellence for studies in classical languages, Assamese, Bengali, Marathi, Pali and Prakrit. India summons Pak envoy to register strong protest over continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. 19th Pravasi Bharatiya Divas convention to be held from the 7th to 9th of January next year in Kolkata. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu describes Indian pilot Smith Macher, hero of Israel, India and entire world, invites him and Prime Minister Narendra Modi to Israel's Independence Day ceremony. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan, trap shooter Neeru Dhanda to be India's flag bearer for the closing ceremony. And now the news in detail. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Olaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. The Ministry of Education has approved 5 centres of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of 5 centres of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali and classical Prakrit. We have more from our correspondent.
3: The Centres of Excellence will be established at Tezpur University in Assam.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இசைப்பெட்டகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை டி கே கோவிந்தராவ் அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். எம் ஏ கிருஷ்ணசுவாமி அவர்கள் வயலின், குருவாயூர் துரை அவர்கள் மிருதங்கம், டி வி வாசன் அவர்கள் கட்டம். படைப்பு சென்னை வானொலி நிலையம்.
1: இன்று பிற்பகல் 1:10 இசை மலர் நிகழ்ச்சியில் உஷா கிருஷ்ணன் அவர்களின் வீணை இசை இடம்பெற கேட்கலாம். தஞ்சாவூர் எஸ் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருதங்கம். சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார். ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
2: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाला युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म

0: And the IG Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. The closing ceremony will be held at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, the same venue that hosted the opening ceremony, and is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. India has put an impressive performance at this year's Games, securing the fourth place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And in men's cricket, India secured the three-match ODI series against the West Indies 2-1, winning the first two matches before suffering a five-wicket defeat in the final game in New Chandigarh last night. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को किया तलब 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक और भारत ने वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराकर एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला अपने नाम की अब समाचार विस्तार से इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बातचीत की और उनके साहस की तारीफ की उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति प्रज्वलित करने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है कैप्टन स्मिथ का इस समय अबुधाबी में उपचार चल रहा है अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भी कैप्टन स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है उन्होंने स्मिथ और अन्य लोगों की वीरता और साहस के प्रति सम्मान का भाव और गहरी श्रद्धा व्यक्त की सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है एक रिपोर्ट
2: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे इसके बाद बीएसएफ को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे
3: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा कारोबारी पेशेवर शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति फिजिस्कियन ने कहा कि अमेरिका और उसके

0: सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन और सरकार के प्रयासों से इन कोशिशों का मुकाबला किया जा रहा है। अमरीका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। अमरीका ने ईरान के विमानन क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ाया है। ईरानी एयरलाइनों की मदद करने वाली विदेशी कंपनियों को प्रतिबंधों की चेतावनी दी गई है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के मुताबिक भारत के अलावा तुर्की, मिस्र और अमरीका ने भी युद्ध विराम के प्रस्ताव दिए। यूक्रेन का कहना है कि समझौते में युद्ध के अलावा ऊर्जा और बंदरगाहों पर हमले रोकना तथा काला सागर में गतिविधियां भी शामिल होनी चाहिए। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि रूस संघर्ष का समाधान निकालने के भारत के प्रयासों का स्वागत करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रखे जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। श्री के अनुसार रूस के सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से राष्ट्रपति पुतिन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यमन के हूती नियंत्रित सना और सादा इलाकों पर हमले किए जाने की पुष्टि की है। ये कार्रवाई हूती विद्रोही समूह के इस दावे के बाद हुई है कि जब उसने रियाद में सऊदी अरब की अरामको तेल कंपनी को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। इस घटनाक्रम से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई किए जाने के दावे किए हैं। यमन के सेना के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि सेना हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले कर रही है। साथ ही हूती सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि यह हमला सना उसके नियंत्रण वाले अन्य इलाकों में सऊदी अरब की कार्रवाई के जवाब में किए गए। समूह ने यह दावा किया कि अभियान अपने उद्देश्यों में सफल रहा है। इथियोपिया की संघीय सेना ने उत्तरी त्रिगाय क्षेत्र की राजधानी मेकेले के हवाई अड्डे पर फिर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। सैनिकों ने पिछले महीने हवाई अड्डे पर कब्जा किया था, जिसके बाद मेकेले के लिए व्यावसायिक उड़ानें रोक दी गई थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार तिगराय में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बाधित होने के कारण जानकारी जुटाना और उसकी पुष्टि करना भी मुश्किल हो रहा है। इथियोपिया सरकार और त्रिगाय पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF ने हवाई अड्डे पर फिर से नियंत्रण की खबरों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। TPLF ने पिछले महीने 23 तारीख को हवाई अड्डे पर कब्जा किया था। इसके बाद इथियोपियन एयरलाइंस ने मेकेले के साथ साथ एक्सुम और शार शहर के लिए उड़ानें निलंबित कर दी थी। इस बीच इथियोपिया और पड़ोसी देश इरिट्रिया के बीच संबंधों में भी तनाव बढ़ गया है। इथियोपिया ने बृहस्पतिवार को 10 इरिट्रिया के राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया और इरिट्रिया में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की। इंडोनेशिया के संबावा इलाके में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 आकी गई। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बरमूडा के तट के पास कल एक एयर एम्बुलेंस की आपातकालीन लैंडिंग की सूचना मिली है। इसमें 6 लोग सवार थे। खोजी दस्ते को फिलहाल 2 लोग ही मिल पाए हैं, जबकि 4 लोग अभी लापता हैं। हवाई यातायात नियंत्रण के अनुसार कनाडा में पंजीकृत ये एयर एम्बुलेंस बरमूडा के एलएफ वेड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमरीका के मैसाचुसेट्स के लिए रवाना हुई थी। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे

0: अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को किया तलब। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगे ध्वजवाहक। और भारत ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हराकर एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ஒலித்த அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய சுகமான ராகங்கள் நிகழ்ச்சி. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं. हमारी संवाददाता ने बताया कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने 26 तारीख से लागू हो गया.
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे. रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे. डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे. भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे. इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है. अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा.
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है. उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृतिक के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे. एक रिपोर्ट.
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे. यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी. सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है. विजयवाड़ा में पेन आईआईटी आंध्र

0: प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। इसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और रक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीटेक जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद बीएसएफ को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और लाल सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का आयोजन भी किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और पोषित करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह जापान के नागोया शहर में भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. The Ministry of Education has approved 5 centres of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of 5 centres of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali and classical Prakrit. Ministry of External Affairs has summoned the Charged Affairs of Pakistan High Commission to launch India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector, Punjab, along the international border on Friday. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. The 19th Pravasi Bharatiya Divas PBD convention will be held from the 7th to 9th of January next year at Kolkata in West Bengal. The convention will be organized by the Ministry of External Affairs in partnership with the West Bengal government.

0: 100.1 FM கோல்டல் மெல்லிசை கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மேன் முகேஷ் குமார். लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए

0: जाएंगी।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार आज का अंतिम दिन है। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन हैज सेड दैट द जर्नी ऑफ विकसित भारत विल बी बिल्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज इंस्टीट्यूट्स, एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स। एड्रेसिंग द 58th फाउंडेशन डे ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया दैट इज ICSI इन न्यू दिल्ली टुडे, मिस्टर राधाकृष्णन एम्फसाइज्ड दैट द नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट गेनिंग द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world, while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements. Talking about ICSI, Mr. Radhakrishnan lauded the institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met United States Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Pappero. In a social media post, Dr. Jayashankar said they discussed ways to further strengthen the security partnership and maritime cooperation.

0: journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
3: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
4: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
3: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्सपर एट

0: AIR News Hindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तईस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य

सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण

0: शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी नेरम 2:30।

0: தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
2: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भरता भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान तथा उड़ीसा के और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। सरकार की इस पहल से भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, शोध और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई है। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। पीएम सेतु योजना का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य

प्रशासन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। यमन की सेना ने दावा किया है कि देश के कुछ अहम मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं सऊदी अरब ने हूतियों के इस दावे को खारिज किया है कि रियाद को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया था। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का आयोजन भी हुआ। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से एकता का संदेश देना था। एशियाई खेलों 2026 का जापान के आइशी नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजावाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: 6 years regular service in level 8 or equivalent. Candidates must also possess a bachelor's degree from a recognized university and 5 years experience in handling administration, accounts or budget work. The maximum age limit is 56 years. Applications through the Cadre Controlling Authority along with prescribed documents and vigilance clearance should reach the Department of Revenue within 60 days from the date of publication of this advertisement. For details, kindly do look up the website at www.dor.gov.in. IIT Mandi invites online applications from Indian nationals for non-teaching staff positions, including junior technical superintendent post in the Center for Quantum Science and Technologies, Indian Knowledge System and Mental Health Applications, Digital and Computing Services, Software Development and Automation, Digital and Computing Services, Network and System Administration, and Staff Nurse. The advertisement is IIT Mandi Recruit NTS 2026 4. Details regarding eligibility, application fee, qualification and the online application process is available on the Institute's website, that is at www.iitmandi.ac.in. International Institute for Population Studies, Mumbai, invites applications for one post of Chief Administrative Officer Group A on deputation basis in level 13 as per the 7th CPC. Candidates should possess a master's degree with at least 55% marks and 15 years of administrative experience in a university, academic institution, government or semi-government institutions, PSUs or other relevant organization. Applicants should have at least 10 years of experience, including 3 years in level 12, and should not be over 55 years of age, as on the last date with relaxations possible in deserving cases. Applications must be submitted through proper channel in 2 hard copies along with NOC, RPARs, ACR dossiers for the preceding 5 years. Integrity certificate, no penalty certificate, vigilance clearance, educational and experience certificates. The applications should be sent by post to the Director and Senior Professor, IIPS, Govindi Station Road, Deonar, Mumbai, 400088. The last date for receipt of applications is 5th October 2026. For details, kindly look up the website at www.iipsindia.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा. आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित. सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान बेंगलुरु में आवश्यकता है प्रोफेसर के 3 पदों की तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की. इन पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन और आवेदन करने की प्रक्रिया सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है www.isec.ac.in. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के पद के लिए भर्ती की जानी है. कुल 21 रिक्तियां उपलब्ध हैं, लेकिन ये रिक्तियां अभी अस्थाई हैं और बिना किसी सूचना के इनमें वृद्धि या कमी की जा सकती है. रिक्तियों की संख्या में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आपको ITBP की भर्ती वेबसाइट पर मिल जाएगी. पता है recruitment.itbppolice.nic.in. उपभोक्ता मामले विभाग कृषि भवन नई दिल्ली में आवश्यकता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के विशेषज्ञ एवं वृत्तिक ग्रेड 2 के तौर पर इन विषयों में नियुक्ति की. विषय है विधि. पद उपलब्ध हैं 2. इन पदों के अलावा भविष्य में होने वाली किसी भी रिक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों का 4 लोगों का एक पैनल भी तैयार किया जाएगा, जो 6 महीने के लिए मान्य होगा. विस्तृत जानकारी उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. वेबसाइट है consumeraffairs.nic.in.

योजना एवं अनुसंधान विभाग पुदुचेरी में संयुक्त निदेशक के 3 पदों को 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने हेतु पात्र एवं योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट pandr.py.gov.in। वेबसाइट का पता एक बार फिर सुन लीजिए,

0: इन और अन्य विवरणों के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट rgipt.ac.in। विशेष जानकारी हासिल करने के लिए आप ईमेल पर अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। ईमेल है recruitment_nts@rgipt.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी प्यारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है खास हमारे लिए उनके पास, और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती है हमारी बराबर नज़र, और फिर हम याद किया करते हैं उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा और हमारे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
2: हेलो मुनीश, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दोज ट्यून इनटू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट मुनीश शर्मा। Well, listeners, he is celebrated as one of the greatest artists in history because of his incredible ability to capture human life on canvas. He is still famous today simply because, firstly, he used a technique called chiaroscuro, which means mixing bright light with deep dark shadows. This made his paintings look highly dramatic and three-dimensional. Secondly, unlike many artists of his time who painted people looking perfect and stiff, he painted people with real feelings. You can see sadness, thought, worry or joy in the faces of his subjects. And lastly, his honest self-portraits of himself, where he honestly showed his own aging process, his wrinkles and his life's hardships, creating a unique visual diary of his life. Yes, he's none other than the greatest visual artist in the history of Western art, Rembrandt. And today we observe Rembrandt's death anniversary. And we shall talk about him later in the program. But first of all, we begin with the news headlines at this hour.
1: जी हाँ, मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और नवाचार के बलबूते पर ही विकसित बनेगा।
2: In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram, Rejinagar assembly by elections.
1: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 साल पूरा।
2: आईएमडी फोरकास्ट हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस ऑफ केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड कराईकल टिल टुमारो।
1: यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में आरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का किया है दावा।
2: एंड एशियन गेम्स 2026 कंक्लूड्स इन नागोया एंड जापान। India secures 4th place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Space Week. Well, listeners, look up at the sky because this week the entire world is celebrating something truly extraordinary, World Space Week 2026.
1: बिल्कुल सही। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक दुनिया भर में लोग अंतरिक्ष विज्ञान और

0: टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं और इस साल इसकी थीम खास तौर पर रोमांचक है, जो है रॉकेट रेवोल्यूशन।
1: But what exactly is this rocket revolution? Is it just about bigger and faster rockets?
0: बिल्कुल नहीं, ये कहीं ज्यादा बड़ी चीज के बारे में है, इंसान के अंतरिक्ष तक पहुंचने के तरीके में बदलाव के बारे में।
1: Yes, and today the picture is changing rapidly. Commercial companies, space startups, universities, reusable rockets, and new space-faring nations are opening the doors to space for more people than ever before.
0: और इसका मतलब है ज्यादा लॉन्च, ज्यादा सैटेलाइट, ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग और शायद इंसानियत के लिए पृथ्वी से परे खोज करने के और भी कहीं ज्यादा मौके।
1: And there is a fascinating reason why World Space Week begins on October 4th. On October 4th, 1957, the Soviet Union launched Sputnik 1, the first human-made satellite to orbit the Earth.
0: और उसी छोटे से सैटेलाइट ने इतिहास को बदल कर रख दिया। उसके लॉन्च के साथ ही अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई और दशकों तक चलने वाली खोज, वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी इनोवेशन का रास्ता खुल गया।
1: एंड देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट डेट, अक्टूबर 10th, 1967। ऑन दैट डेट द आउटर स्पेस ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स। इट एस्टैब्लिश्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस।
0: तो वर्ल्ड स्पेस वीक दो अहम पड़ावों को जोड़ता है, अंतरिक्ष में इंसानों के पहले कदम और ये पक्का करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिश कि अंतरिक्ष की खोज का फायदा पूरी इंसानियत को मिले।
1: Space technology today isn't just about astronauts and rockets. Satellite technology helps with weather forecasting, disaster management, agriculture, communications, navigation, environmental monitoring and sustainable development.
0: दूसरे शब्दों में, अंतरिक्ष भले ही हमसे सैकड़ों या हजारों किलोमीटर ऊपर हो, लेकिन इसके फायदे यहीं धरती पर मिलते हैं। और जब हम रॉकेट क्रांति की बात करते हैं, तो भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
1: Absolutely, Munish, and India has transformed itself from a country that once had to rely heavily on foreign launch capabilities into one of the world's important space powers.
0: गौरतलब है अभिषेक कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के माध्यम से भारत ने PSLV, GSLV और LVM3 सहित लॉन्च वाहन विकसित किए हैं और साथ ही उपग्रह प्रौद्योगिकी, ग्रह अन्वेषण और मानव अंतरिक्ष उड़ान में क्षमताओं का निर्माण भी किया है।
1: एंड इंडियाज रीसेंट मिशंस शो जस्ट हाउ रैपिडली द कंट्री स्पेस प्रोग्राम इज इवॉल्विंग। लेट्स स्टार्ट विद स्पेस डेक्स। The space docking experiment demonstrated autonomous docking and undocking between two satellites along with power transfer. That achievement placed India among the select nations capable of demonstrating space docking technology. So why is docking so important?
0: क्योंकि भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन, चालक दल के मिशन, उपग्रह सर्विसिंग और अन्य जटिल अंतरिक्ष संचालन काफी हद तक अंतरिक्ष यान की कक्षा में मिलने और जुड़ने की क्षमता पर निर्भर होंगे। इसके बाद निसार आता है, जो नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। निसार को भारत के GSLV F-16 का उपयोग करके 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। मिशन पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए नासा और इसरो रडार प्रौद्योगिकियों को आपस में जोड़ता है।
1: And India's human space flight ambitions also took a major step forward. In 2025, Indian astronaut group captain Shubhanshu Shukla traveled to the International Space Station as part of the XM-4 mission, and during his stay, he conducted 7 microgravity experiments.
0: और ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि भारत अपने स्वयं के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की तैयारी कर रहा है। लेकिन शायद इस साल की रॉकेट क्रांति थीम का सबसे अच्छा उदाहरण यही भारत में हो रहा है और हम निजी अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं।
1: On July 18, 2026, Skyroot Aerospace's Vikram 1 became the first privately developed Indian rocket to undertake an orbital launch from Indian soil, and it launched from none other than Satish Dhawan Space Center at Sriharikota.
0: बिल्कुल, मिशन ने सरकारी एजेंसियों, स्टार्टअप और निजी उद्योग को शामिल करते हुए अधिक विविध अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की ओर भारत के संक्रमण में एक प्रमुख मील का पत्थर चिन्हित कर दिया है।
1: And that is the rocket revolution in action. Space is no longer only about government rockets. It is increasingly about partnerships between governments, scientists, universities and private companies.
0: और एक और महत्वपूर्ण विकास है, भारत के प्रयास सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने के बारे में नहीं है, वे अंतरिक्ष गतिविधियों को

0: अधिक टिकाऊ बनाने के बारे में भी हैं।
1: So World Space Week is not simply a celebration for astronauts or scientists. It is a celebration for all of us, and especially for young people who may become the scientists, engineers, entrepreneurs and astronauts of tomorrow.
0: पहला अंतरिक्ष युग स्पुतनिक नाम के एक छोटे से सैटेलाइट के साथ शुरू हुआ और आज हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट, प्राइवेट लॉन्च कंपनियां, सैटेलाइट के समूह, चंद्रमा की खोज, इंसानों का अंतरिक्ष में जाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े लक्ष्य वाली साझेदारियां शामिल हैं।
1: And India is determined to be an important part of that future, from Chandrayaan and Aditya L1 to Nisar, SpaceX, Gaganyaan preparations and the emergence of private launch companies. India's space story is moving from exploration to a much broader space ecosystem.
0: तो दोस्तों इस वर्ल्ड स्पेस वीक में आइए हम ये याद रखें कि रॉकेट क्रांति का मकसद सिर्फ अंतरिक्ष में और दूर तक पहुंचना नहीं है। इसका मकसद अंतरिक्ष के फायदों को इंसानियत के और करीब लाना है। ये इनोवेशन के बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में है।
1: And it's about inspiring the next generation, and most importantly, it is about asking one enormous question: where do we go next? The answer may be written in the stars.
0: लेकिन सफर यहीं से शुरू होता है, धरती से। और दोस्तों अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि क्या कुछ है आज उनके पास खास।
1: प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on this day last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure, and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. We have more from a correspondent.
2: PM Setu aims to enhance the overall quality and relevance of vocational training by transforming Government India's Industrial Training Institutes ITIs into modern industry-aligned training institutions. The scheme has a total outlay of over 60,000 crore rupees, comprising 30,000 crore rupees from the centre, 20,000 crore rupees from states and 10,000 crore rupees from industry. ITIs provide vocational training to equip youth with practical skills for employment and industry. Under the Craftsman Training Scheme, CTS, training is offered through government and private industrial training institutes in engineering and non-engineering trades. Its course duration varies from 6 months to 2 years, depending on the trade. The Directorate General of Training is the apex organization responsible for the development and coordination of vocational training at the national level. The total number of ITIs, including government and private, in the country has increased to over 13,000 in 2026 from over 9,000 in 2014, indicating an increase of 42%. Further, enrollment in ITIs across the country has also increased to 14.70 lakh in academic session 2025-26 from 9.51 lakh in academic session 2014-15, indicating an increase of 54%. At the national level, the ministry has constituted a national steering committee to provide overall direction for the scheme. With Anandan Rishu, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
0: Devadhidev Mahadev ki pavan nagri Kashi, Bharatiya Vayu Sena ke shaurya, sahas aur samarthya ki sakshi banne ja rahi hai dosto. Varanasi ke Namo Ghat par agami 24 se 26 October tak ek bhavya air show ayojit hone ja raha hai. Aur pehli baar इस तरह का कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में होने जा रहा है और इसकी ये पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री खुद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहें।
3: गंगा की अविरल धारा के किनारे बसी काशी में जब आसमान भारतीय वायुसेना के विमानों की गर्जना से गूंजेगा तो ये दृश्य देश के सामरिक सामर्थ्य और काशी की सनातन सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर आगामी 24 से 26 अक्टूबर तक भव्य एयर शो की तैयारियां जोरों पर है। 25 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति भी संभावित है। पिछले दिनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आयोजन स्थल पर दर्शक दीर्घाओं, ग्रैंड स्टैंड

0: विशिष्ट एवं अति विशिष्ट अतिथियों के लिए निर्धारित क्षेत्र, मीडिया एरिना, प्रवेश एवं निकास मार्ग, सुरक्षा जांच केंद्र और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी। नमो घाट के साथ ही गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में संभावित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों को जोन और सेक्टर में विभाजित कर व्यवस्थित प्रबंधन की कार्य योजना बनाई गई है। इस एयर शो को लेकर आम नागरिकों में भी बेहद उत्सुकता है। बड़ी संख्या में लोग भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन को देखने के लिए उत्साहित हैं। इसे देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, सुगम यातायात, पार्किंग और जोनवार स्थल चिन्हांकन की व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आयोजन के दौरान नमो घाट के साथ ही काशी के प्रमुख घाटों और आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा रहने और पहुँचने की संभावना है। ऐसे में घाटों पर भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन, पार्किंग तथा जल और थल मार्ग से आवागमन की व्यवस्थाओं को एकीकृत कार्य योजना के साथ संचालित किया जाए। परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: In a major boost to agricultural diversification and local livelihoods, the Union Territory of Ladakh has embarked on a pioneering experiment to cultivate saffron, expanding its success in high-altitude farming. We have a report.
2: Building on the recent success of establishing the world's highest flower garden with high-altitude lilium flowers, the administration of Hiti Ladakh, under the guidance of the Honorable Lieutenant Governor, has launched a large-scale saffron cultivation project aimed at transforming the region's agricultural landscape. Under the ambitious project Him Sarovar, the administration has sown 800 kilograms comprising 90,000 premium high-quality Iranian saffron combs specially suited to Ladakh's high-altitude agroclimatic conditions. The cultivation covers 4,000 square meters of previously barren land at Spituk Farka in Leh, which has been successfully rejuvenated into fertile cultivable land. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's visions for agricultural diversification, the initiative aims to build economic self-reliance for local communities. The Associate Professor of National Institute of Sawarikpa, Dr. Tashi Stopge, stated, "The saffron has very high medicinal and spiritual values, and this pioneering project holds immense potential to boost the local economy and will create lucrative and sustainable new livelihood opportunities for the farmers, youth and self-help groups of Ladakh."
3: यूटी गवर्नमेंट ने एक कमल का काम किया है। कश्मीर में पाया जाता है एक जड़ी बूटी जो सेफ्रॉन, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं खचे कुरकुम। ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो लद्दाख में जो अमची के नाम से जाना जाता है और सोवारिकपा जो एक चिकित्सा है, उसमें सदियों से दवाई बनते आ रहा है और ये बहुत महंगा भी है और मिलने में भी मुश्किल है। आज ये लद्दाख में जो यूटी गवर्नमेंट ने यहाँ पर बड़ा स्केल में एक हाई एल्टीट्यूड और डेजर्ट में ये कल्टिवेट कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे जो सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा। इसका जो सोवारिकपा के सिस्टम में ज्यादातर जो हमारे बॉडी में जो ब्लड का प्रॉब्लम होगा या लीवर का प्रॉब्लम होगा या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, ब्लड रिफ्रिक्शन करना होगा, ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: विद दिस प्रोजेक्ट लद्दाख इज नॉट जस्ट एडिंग कलर्स टू इट्स लैंडस्केप बट ऑल्सो एडिंग वैल्यूज टू इट्स इकोनॉमी फ्रॉम फ्लावर्स टू द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस। फॉर परिक्रमा, दिस इज सेतन टशी फ्रॉम लेह लद्दाख।
4: पश्चिम बंगाल में पर्यटन और पूर्वाधार विकास को एक नई गति प्रदान करने का काम राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कर रहे हैं और इसी कड़ी में इस सप्ताह उत्तर बंगाल के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मूर्त रूप दे दिया गया है, जिससे राज्य के पर्यटन और उद्योग को वहां एक नया बंगाल ट्री टूरिज्म ब्रांड प्रदान किया जाएगा।
5: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार को नई गति मिल रही है। इसी कड़ी में इस सप्ताह केंद्र व राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल के तीव्र विकास हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया है। इनमें तिस्ता नदी पर 1947 में बने ऐतिहासिक कोरोनेशन पुल को 6 लेन का एक वैकल्पिक पुल प्राप्त होगा। इसके लिए 2 दिन पहले ही केंद्रीय परिवहन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उनके मंत्रालय द्वारा 1,175.59 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान करने की घोषणा की है। इस पुल के निर्माण से सिक्किम तथा असम के बीच संपर्क और मजबूत होगा। इसी सप्ताह श्री गडकरी ने एक और महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा की, जिसमें सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, शिलांग व सिलचर को जोड़ने के लिए एक 630 किलोमीटर लंबे राजमार्ग कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इस परियोजना की घोषणा करते हुए श्री गडकरी ने कहा,
6: एक ही रोड

0: बना रहा हूँ, सिलीगुड़ी गुवाहाटी, गुवाहाटी शिलांग और शिलांग टू सिलचर लाइफ लाइनिंग. टोटल लेंथ 630 किलोमीटर एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 61,500 करोड़ एक ही प्रोजेक्ट. सिलीगुड़ी से गुवाहाटी हाई स्पीड कॉरिडोर है 400 किलोमीटर 30,000 करोड़, ये अलाइनमेंट अप्रूवल स्टेज पर है, अभी हो जाएगी.
1: इसी हफ्ते पर्यटन के विकास हेतु केंद्रीय पर्यावरण तथा वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अलीपुर द्वार के बक्सा अभयारण्य में एक 3 वर्षीय बाघिन को छोड़ा. इसी शनिवार को राज्य के पर्यटन मंत्री डॉक्टर शंकर घोष ने भूटान सीमा के निकट कालिम्पोंग जिले के चालसा में पर्यटन उद्योग से जुड़े कुछ उद्यमियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उत्तर बंगाल के पर्यटन विकास के लिए 4,976 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया गया. परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कौशांग.
2: तो अभिषेक, आइए अब चलते हैं लेकर अपने श्रोताओं को खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. एशियन गेम्स 2026 ऑफिशियली नागोया के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में संपन्न हो गए हैं, जिससे 43 डिसिप्लिन में 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक चले एक्शन से भरपूर कंपटीशन अब खत्म हो चुके हैं. ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली गेम्स के खत्म होने का ऐलान किया, जिससे कॉन्टिनेंटल स्पोर्टिंग इवेंट का एक यादगार एडिशन भी खत्म हो गया. पहले एशियन गेम्स की सेरेमोनियल टॉर्च और झंडा कतर के रिप्रेजेंटेटिव को सौंप दिए गए, जो 2030 में दोहा में अगला एडिशन होस्ट करेगा. और हमारे पास इस बारे में एक रिपोर्ट.
3: India finishes fourth in the overall medal standings behind China, Japan and Korea with an impressive 85 medals including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. This is India's second largest medal haul in Asian Games history behind only the record performance at Hangzhou 2023. India's women's hockey team made history by winning gold for the first time since 1982, ending a 44-year wait, while the men's hockey team won back-to-back Asian Games titles for the first time. In archery, India's women's recurve team secured the country's first ever Asian Games gold in the event, while Kumkum Mohod became the first Indian woman to win individual recurve gold. In golf, Pranavi Urs became India's first women golfer to win an Asian Games gold medal. India's boxing contingent scripted history with 3 gold medals, the nation's first ever triple gold haul in single Asian Games edition. In weightlifting, Mirabai Chanu's silver gave India its first medal in the sport since 1998. India proudly signs off from Aichi Nagoya 2026, etching another glorious chapter into its sporting history. Komati Parekh, Akashwani News, Delhi.
2: और आइए दोस्तों, अब याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उसके बाद बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
4: Today is the birth anniversary of well-known freedom fighter and revolutionary Shyamji Krishna Varma. He was born on the 4th of October 1857 in Manvi, a port town in the formerly princely state of Kutch in Gujarat. After completing his schooling in Mumbai, he studied at Balliol College in Oxford. In 1881, the then Secretary of State for India sent him to represent the learning of his country at the Berlin Congress of Orientalists. There, he not only read his own paper on the subject of Sanskrit as the living language of India, but also read a patriotic Sanskrit poem and translated it into English for the audience.
5: In 1885, he returned to India and enrolled himself as an advocate of the Mumbai High Court and started his practice. During his stay in India, Shyamji was very much impressed with Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. He initiated a very friendly relationship with Tilak, which inspired him to the nationalist movement.
4: Shyamji settled in London after his return to England in 1897. In 1905, he was barred from practicing law by London's Inner Temple on charges of sedition for writing against the colonial government. Varma was posthumously reinstated by the Inner Temple in 2015.
6: Yes, and we are also remembering Janis Celine Joplin, who passed on this day in 1970. She was an American singer and songwriter, one of the most iconic and successful rock performers of her era.

और दोस्तों अब हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की अभिनेत्री और नृत्यांगना संध्या शांताराम के बारे में। संध्या शांताराम जिनका असल नाम था दरअसल विजया देशमुख और वो प्रसिद्ध फिल्मकार वी शांताराम की पत्नी थी। उनकी आज पुण्यतिथि है और उनके निर्देशन में बनी कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय और नृत्य से अपनी एक अलग पहचान बनाई। संध्या को खास तौर पर झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और मराठी फिल्म पिंजरा के लिए याद किया जाता है। फिल्म पिंजरा में उनके अभिनय और नृत्य को बहुत सराहा गया और वहीं नवरंग का जो संगीत था वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ। संध्या शांताराम की सबसे खास चर्चित फिल्मों में झनक झनक पायल बाजे को एक खास जगह मिली है और इस फिल्म में उन्होंने शास्त्रीय नृत्य पर आधारित भूमिका निभाई थी और फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी मिली थी और इसके अलावा उन्हें कई मराठी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। तो आइए सुनते हैं झनक झनक पायल बाजे और नवरंग से उनके ये ऐसे दो यादगार गीत जिन्हें उनके चाहने वाले आज भी याद करते हैं।

0: Yes, and like we are mentioning the beginning of our program, Rembrandt passed on this day in 1669. He was a Dutch Golden Age painter, printmaker and draftsman. He is generally considered one of the greatest visual artists in the history of Western art. It is estimated that Rembrandt's surviving works amount to about 300 paintings, 300 etchings and several hundred drawings. And unlike most Dutch painters of the 17th century, Rembrandt's works depict a wide range of styles and subject matter, from portraits and self-portraits to landscapes, genre scenes, allegorical and historical scenes, biblical and mythological subjects, and animal studies. And his contributions to art came in a period that historians call the Dutch Golden Age.
1: तो दोस्तों हमने जिक्र किया था भी संध्या शांताराम का जिनकी आज पुण्यतिथि थी और बंगाली संगीत की दुनिया में अपनी सुरीली और भावपूर्ण आवाज से अपनी पहचान बनाने वाली संध्या मुखर्जी उनका आज उनकी जयंती है जिन्हें प्यार से गीताश्री भी कहा जाता था और उनका जन्म आज ही के दिन 1931 में कोलकाता में हुआ था उन्होंने बांग्ला के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया और अपने लंबे करियर में उन्होंने 10,000 से ज्यादा गीत गाए उन्होंने एस डी बर्मन

0: मदन मोहन, नौशाद, अनिल विश्वास और सलिल चौधरी जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। उनका पहला हिंदी फिल्मी गीत 1950 में आई फिल्म तराना के लिए था। बांग्ला संगीत में संध्या मुखर्जी की पहचान इतनी बड़ी थी कि उनकी आवाज कई दशकों तक श्रोताओं की पसंद बनी रही। और श्रोताओं, आज ही जयंती है हिंदी साहित्य को समझने के लिए। जिन नामों का हम उल्लेख सबसे पहले करते हैं उनमें प्रमुख हस्ती आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आज ही के दिन 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्मे रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, आलोचक और निबंधकार थे।
1: सो विद दैट इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस एडिशन ऑफ परिक्रमा। So thank you so much for being with us. So from Munish Sharma and me, Abhishek Mukhopadhyay, till the next time, bye and
0: Namaskar. Namaskar.

0: தொடர்வது இந்தியல் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16

अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन के लिए उन्नत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी पीएम सेतु योजना को 4 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया था। आज इस योजना का एक वर्ष पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। 60,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली पीएम सेतु योजना में केंद्र सरकार का योगदान 30,000 करोड़ रुपए, राज्य सरकारों का 20,000 करोड़ रुपए और उद्योग जगत का 10,000 करोड़ रुपए है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि पीएम सेतु योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, किस तरह देश के सरकारी ITI को हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए आधुनिक बनाया जा रहा है, इसमें उद्योगों की क्या भूमिका है, युवाओं के लिए नए दौर के कौन कौन से पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं और योजना के एक वर्ष में अब तक कितनी प्रगति हुई है। श्रोताओं, भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन इस युवा शक्ति को रोजगार और उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI लंबे समय से युवाओं को व्यवहारिक और रोजगार परक प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ITI में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। अलग अलग ट्रेड के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक होती है। देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वय की जिम्मेदारी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी DGT की है। ITI के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के पास होती है। देश में सरकारी और निजी ITI की कुल संख्या वर्ष 2014 में 9,776 थी, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 13,888 हो गई है, यानी इसमें लगभग 42% की वृद्धि हुई है। इसी तरह ITI में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी शैक्षणिक सत्र 2014-15 के 9,51,000 से बढ़कर 2025-26 में 14,70,000 हो गई है, यानी इसमें 54% की वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ते हुए इस नेटवर्क को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए पीएम सेतु एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि पीएम सेतु किस तरह ITI में बदलाव ला रही है।
3: पीएम सेतु योजना के तहत देश के 1000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल हैं। इन संस्थानों को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। औसतन प्रत्येक हब ITI से 4 स्पोक ITI जुड़ेंगे। इस व्यवस्था के तहत हब ITI में आधुनिक और उन्नत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिनका लाभ संबंधित स्पोक ITI को भी मिलेगा। हब ITI में इनोवेशन सेंटर, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की सुविधाएं, प्रोडक्शन यूनिट और प्लेसमेंट सेवाएं विकसित की जाएंगी। वहीं स्पोक ITI के माध्यम से अधिक विद्यार्थियों तक आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और संस्थानों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। पीएम सेतु के तहत स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल कंटेंट और उद्योग आधारित पाठ्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक देश के 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी NSTI की क्षमता बढ़ाना है। ये NSTI भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित है। इन संस्थानों में क्षेत्र विशेष के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, साथ ही वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से

0: शिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस तरह पीएम सेतु का उद्देश्य केवल आईटीआई की इमारत और मशीनरी को आधुनिक बनाना नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों की क्षमता और रोजगार के अवसरों को उद्योग की जरूरतों से जोड़ना भी है। श्रोताओं, पीएम सेतु की एक खास विशेषता इसमें उद्योग की भागीदारी है। योजना के तहत संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उद्योग जगत से परामर्श करके आईटीआई का चयन कर रहे हैं। उद्योगों की जरूरत, क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता और भविष्य में रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए आईटीआई को अपग्रेड करने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसके लिए उद्योग भागीदारों को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी प्रस्तुत करना होता है। योजना के तहत उन्नत आईटीआई क्लस्टर के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी के जरिए उद्योग के नेतृत्व वाली व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इस पूरी व्यवस्था के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव करते हैं। यह समिति योजना को व्यापक दिशा देने, संचालन संबंधी दिशा निर्देश तय करने, प्रगति की जानकारी करने और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने का काम करता है।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं पीएम सेतु के जरिए आईटीआई को आधुनिक बनाने, उद्योग की भागीदारी बढ़ाने और युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं।
2: श्रोताओं, पीएम सेतु के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर योजना की प्रगति के आंकड़े भी महत्वपूर्ण है। एक वर्ष के भीतर 850 आईटीआई की पहचान की जा चुकी है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्कोप आईटीआई शामिल हैं। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्लस्टर की पहचान कर ली है और इसके लिए अलग राज्य बजट मद भी बनाई गई है। वहीं 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अपनी स्टेट स्टीयरिंग कमेटियां गठित कर ली हैं। इसके अलावा 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उद्योगों की भागीदारी आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने पीएम सेतु को पायलट चरण से आगे बढ़ाकर देश भर में सभी 200 चिन्हित आईटीआई क्लस्टरों में लागू करने को भी मंजूरी दे दी है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उद्योग की तैयारी और अपनी कार्यान्वयन क्षमता के आधार पर योजना को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। अब तक 14 आईटीआई क्लस्टरों के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मंजूरी दी जा चुकी है। इन योजनाओं में कुल 3,446 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इन 14 क्लस्टरों में आंध्र प्रदेश का कंचरा पालेम, उड़ीसा का क्योंझर बड़बिल, गुजरात का सूरत, तेलंगाना के ओल्ड सिटी संगारेड्डी, पाटनचेरू और मेदचल, राजस्थान का भिवाड़ी, उत्तर प्रदेश का मेरठ, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और पुणे तथा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू शामिल हैं। इन क्लस्टरों में स्टील और मेटल, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल तथा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े उद्योग भागीदार शामिल हैं। श्रोताओं, पीएम सेतु के माध्यम से केवल मौजूदा प्रशिक्षण को बेहतर बनाने पर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि युवाओं को भविष्य की तकनीकों और नए रोजगार क्षेत्रों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत 32 नए दौर के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, सोलर एनर्जी, 5G और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। राज्य अपनी जरूरत और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार इन नए पाठ्यक्रमों को अपने आईटीआई में अपना सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को उन क्षेत्रों में कौशल प्रदान करना है जहां आने वाले वर्षों में रोजगार और उद्योग की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है। श्रोताओं, पीएम सेतु के तहत वैश्विक स्तर पर भी साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि भारत के कौशल प्रशिक्षण को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। NSTI चेन्नई के लिए सिंगापुर, NSTI कानपुर के लिए फ्रांस और NSTI भुवनेश्वर के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते किए गए हैं। वहीं NSTI हैदराबाद के लिए जर्मनी के साथ संयुक्त घोषणा पत्र यानी ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का आदान प्रदान किया गया है। इन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की क्षमता बढ़ाने और उन्नत कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
1: श्रोताओं, पीएम सेतु का एक वर्ष पूरा होना केवल एक योजना की वर्षगांठ नहीं है, बल्कि भारत के कौशल विकास तंत्र को बदलने की दिशा में उठाए गए कदमों की समीक्षा का अवसर भी है। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर

ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में युवाओं को सही समय पर सही कौशल देना रोजगार और आर्थिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम सेतु इसी दिशा में कौशल से रोजगार, रोजगार से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से विकसित भारत की यात्रा को मजबूत करने की पहल है। आईटीआई के माध्यम से देश का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि आधुनिक उद्योग की जरूरतों को पूरा करने वाला कुशल कार्यबल और भविष्य का उद्यमी भी बन सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण के आज के अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। नमस्कार।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट. ब्रेंट क्रूड राइजेस नियरली 5%. WTI क्रूड ड्रॉप्स अराउंड 1.5%. इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस डिक्लाइन लास्ट वीक एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट सेलर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज इन सितंबर. इन्फ्यूज ओवर 9,600 करोड़ रुपीज थ्रू प्राइमरी मार्केट.
1: पिछले हफ्ते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में मिला जुला रुख. ब्रेंट क्रूड लगभग 5% उछला. WTI क्रूड करीब 1.5% गिरा. सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक गिरावट. और सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों की बिकवाली की. प्राथमिक बाजार में 9,600 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया.
0: And may we just once again remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Global crude oil prices displayed mixed trend this week. Brent crude December futures rose 4.9% to settle at $102.25 per barrel. West Texas Intermediate crude November futures dropped 1.4% to end at $91.11 per barrel over the week. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for updates on latest developments in West Asia.
3: Hi. The first thing in West Asia is that today the OPEC plus, seven OPEC plus countries have decided to keep November production unchanged. That means we might not see any additional plant supply increase. Secondly, we've seen some kind of escalation on the Saudi-Yemen Houthi front. Houthis had yesterday claimed that they attacked Riyadh, specifically the Aramco facility. While Saudi Arabia has rejected these claims, any potential danger to Saudi Arabia's oil infrastructure may put pressure on oil prices in the future. Hormuz continues to remain a big oil market risk. Even today, there was a report of an unidentified projectile hitting an oil tanker. Now, these geopolitical tension is being counterbalanced by G7's decision to coordinate the release of 100 million barrels of oil and refined products, which may help ease the pressure. But I think the volatility will remain for some days.
1: धन्यवाद मनीष शिवा. ये थे हमारे संवाददाता मनीष शिवा. और जैसा कि उन्होंने भी बताया, ओपेक प्लस के सात देशों सऊदी अरब,

0: روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان نے نومبر میں بھی ستمبر 2026 والے اتپادن کوٹے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ 4 اکتوبر کو ہوئی ورچوئل بیٹھک میں لیا گیا۔ بیٹھک میں ان دیشوں نے ویشوک تیل بازار کی استھتی اور بھوشیہ کی سمبھاوناؤں کی سمیکشا کی۔ संयुक्त मंत्री स्तरीय निगरानी समिति JMMC की 68वीं बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। समिति ने चेतावनी दी कि हमला होने या आपूर्ति में रुकावट से बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तो ये बहुत सारी खबरें हैं दुनिया में अस्थिरता की, और देखते हैं कि अब कॉलर्स इंतज़ार कर रहे हैं हमारे। मेरठ से हरीश लाइन पर हैं। हरीश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, मैं ये कह रहा था मेरी म्यूचुअल फंड में 70,000 to 80,000 की सिप चल रही है और मेरा टाइम होराइजन 10 to 12 ईयर्स है सर, तो क्या सही है सर मेरा म्यूचुअल फंड में? मैंने स्मॉल कैप में और मिड कैप में और फ्लेक्सी कैप में कर रखा है, एक SBI कॉन्ट्रा फंड ले रखा है सर।
2: जी हरीश जी, आपके टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग और आपकी जो कैटेगरी सिलेक्शन है ये एकदम अलाइंड है। फोकस आपका इस पूरे समय में इस पे रहना चाहिए कि जो आपने मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन रखी हुई है वो एलोकेशन एक सीमित तरीके से आपके कोर पोर्टफोलियो के अराउंड बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें अपना जो परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर है पोर्टफोलियो का उसको 30% से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि लंबे समय में बहुत बेहतर रिटर्न देने की ये आपको गारंटी मतलब संभावना देते हैं, बट होता क्या है कि इनमें जो एक रिस्क लेवल है वो भी काफ़ी हाई रहता है। तो हमें अपना एक कोर पोर्टफोलियो रखना चाहिए, जैसे आपने बताया फ्लेक्सी कैप कॉन्ट्रा टाइप की कैटेगरी से, और मिड और स्मॉल कैप जो एक अग्रेसिव ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करता है वो एक एक लिमिटेड तरीके से रहे तो ये काफ़ी सही रहता है। आप एक चीज़ का ध्यान ये रख सकते हैं कि आप थोड़ा सा पोर्शन डेट एलोकेशन में रख सकते हैं ताकि आपकी एक एसेट एलोकेशन इस तरीके से बनी रहे। आप जब मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा हो रहे हो और आपको डर की संभावना लगती हो, तब जो आपकी डेट एलोकेशन होती है वो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसका आप ध्यान दीजिए, अपनी SIPs को कंटिन्यू रखिए। कोई भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर होती है तो उससे अपने SIPs को स्टॉप या पॉज ना करें।
0: जी, आपने जैसा अभी बताया वो स्मॉल कैप की हालत, ये कई जगह देखा है, क्योंकि लोग अक्सर एजेंट्स के पास या एडवाइज़र्स के थ्रू करते हैं, या कई बार लोग ऐसे सलाह दे रहे होते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे होते हैं कि आप इसमें डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, और कई बार पोर्टफोलियो देखते हैं कि आप 60-70% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं। थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगता है, जैसे अभी पिछले कुछ महीने से शायद अच्छा लग रहा हो, किसी ने अभी एक आध साल में किया होगा तो उसको बढ़त भी कुछ दिख रही होगी, लेकिन आगे के लिए क्या करें?
2: बिल्कुल, आगे के लिए बस ध्यान ये देना चाहिए, ये जो इतना अग्रेशन जब बिल्ड हो जाता है पोर्टफोलियो में, तो मार्केट जब, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट जब हरी दिख रही होती है तब ये वाले फंड्स आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। इसे हम एक तरीके से परफॉर्मेंस चेजिंग कह देते हैं। वो ना करते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका टेम्परमेंट है वैसा कि आप ये स्मॉल कैप मिड कैप की इतनी ज़्यादा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो आप बिल्कुल वो करिए, पर ध्यान इस बात का रखना चाहिए
0: कि उठा सकते हैं
2: कितना रिस्क उठा सकते हैं, और रिस्क एक ही बार आपको दस्तक देती है अपने पोर्टफोलियो में, और जब देती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि उतना ज़्यादा सही नहीं था। इसीलिए जैसे अभी मैं हरीश जी को बता रही थी कि आप डेट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखिए और अपना रिस्क आपको जानना चाहिए, उससे पहले इन्वेस्ट करने से पहले जो अपने एक पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगर आपका गोल ही आपके 3 साल का गोल है तो आप मिड स्मॉल कैप छोड़िए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास ही सूटेबल नहीं है। जैसे हरीश जी ने बोला उनका 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, इस होराइजन के लिए आप स्मॉल कैप मिड कैप एलोकेशन चाहे तो 30-40 रख सकते हैं,
0: बस 30-40, उससे ज्यादा नहीं।
2: मतलब फॉर स्टार्टर्स आपको 20-25 तक ही उसको
0: 20-25 ही रखना चाहिए जी, नए निवेशकों के लिए। जी
3: वेल, लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर व्हाट हिज क्वेश्चन इज। योगेश जी, सवाल पूछे।
4: जी नमस्कार आप सभी को। मेरा एक सवाल है और एक क्लैरिफिकेशन है। जो मैंने पिछली बार सवाल पूछा था कि सारा कुछ हमारा डिजिटल एसेट में कन्वर्ट होता जा रहा है, उसका रीजन ये था कि रियल एस्टेट अपने आप में एक फिजिकल एसेट क्लास होता था, बट उसको रीट की वजह से

0: डिटाइट कर दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है. दूसरा जो मेरा आज का सवाल है वो ये है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को ऐड करने का सही तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा पोर्टफोलियो ही 1 करोड़ से कम का है, अगर हम उसमें रियल एस्टेट ऐड करते हैं तो जैसे ही हम ऐड करेंगे वो एक मेजर पोर्शन खा जाएगा पोर्टफोलियो का अपने आप में, जबकि हमारा गोल है कि 20% से ज्यादा रियल एस्टेट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. तो क्या अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक SIP करें एक मिड या लार्ज मिड कैप फंड में और उसको एक रियल एस्टेट का लेवल कर दें फिलहाल के लिए, मेंटल लेवल दे दें रियल एस्टेट, और जब वो अपने आप में एक अच्छा अमाउंट हो जाए तो फिर उसको हम रियल एस्टेट के लिए यूज करें.
1: योगेश जी, मुझे आपका वो सवाल याद है जिस पे अभी आपने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा. मैं आपको एक थॉट देना चाहूँगी कि जो रियल एस्टेट का जो एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल रियल एस्टेट आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर आपके दिमाग में इस तरीके से है, तो एज एन एसेट अगर आपको वो चाहिए तो आपको कोई भी कुछ भी कहे वो आपको लगेगा नहीं कि उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए. बट मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में आजकल इनडायरेक्ट मतलब नॉट फिजिकल तरीके से जो रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिलता है वो इतना इजी हो चुका है, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है. आप कह रहे हैं अगर वो कैपिटल रिक्वायरमेंट बन भी जाती है तो आप फिर उसको फिजिकली खरीदें, बट बियॉन्ड दैट जैसे और दो प्रॉब्लम्स रहती हैं फिजिकल रियल एस्टेट में, विच इज़ इलिक्विडिटी या फिर जो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जैसे आपने बोला कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो इमीडिएटली काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो ये कुछ रिस्क रहेंगे ही जो फिजिकल रियल एस्टेट की जहाँ तक बात है. फिर भी रियल एस्टेट का एक्सपोजर जो रीट्स के माध्यम से आजकल मिलता है, म्यूचुअल फंड्स में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपको एक रीट्स की एक एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसमें क्योंकि वो एलोकेशन लिमिटेड रहती है, हाल फिलहाल में 2-3 नए फंड्स आए हैं विच आर फोकस्ड ऑन दिस, यू नो वो रीट्स ओरिएंटेड इंडेक्स फंड हो जाते हैं. तो क्योंकि वो पैसिव फंड्स हैं आपको इतना पता होता है कि वो कौन से रीट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी लिस्टेड रियल एस्टेट हैं जिसका आपको एक्सपोजर मिल जाएगा. तो मेरी नज़र में आप उसको एक म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको सहानुभूति देता है कि ये मुझे एक रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल रहा है. लिमिटेड रीट्स अवेलेबल हैं आज की तारीख में हमारी लिस्टेड मार्केट में, बट क्योंकि ये इंडेक्स है तो ये रियल एस्टेट कंपनीज का भी आपको एक्सपोजर देगा और रीट्स का भी जो आप चाह रहे हैं वो एक्सपोजर आपको मिल जाएगा.
2: जी, रियल एस्टेट के लिए अब तक भारतीय निवेशकों में काफ़ी प्यार बना हुआ है,
1: बिल्कुल
2: ये दिखाई दे रहा है. लेकिन इस पर हम इतिहास में जाएं, अगर इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाएं, तो कई बार हम देखते हैं जो काफ़ी जानकार एडवाइजर्स हैं, सलाहकार हैं, विद्वान हैं, इवन मुझे नील फर्ग्यूसन की किताब पुरानी याद आ रही है, उसमें भी उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था, कैसे बाजार गिरा था और सब कुछ बर्बाद हुआ था, कई शहर खाली हो गए थे. तो रियल एस्टेट में रिस्क जब आता है और जब गिरावट होती है तो बुरी तरह से वो बर्बाद करके जाता है.
1: वो बात भी है, और जहाँ तक मतलब मैं योगेश जी की बात समझ पा रही हूँ, रियल एस्टेट के लिए आपका एक फेवरेटिज्म आ जाता है, क्योंकि वो जो फिजिकैलिटी अटैच होती है कि ये
2: है हमारे पास
3: समथिंग पैल्पेबल.
1: एग्जैक्टली. तो कभी कभी वो एक मेरे नज़रिए में नुकसानदेह बात हो जाती है, क्योंकि आजकल के टाइम्स में जहाँ पे बिल्डर्स आपको बेच देते हैं पर उसका जो उसको जो बनाना है, जो ग्रोथ है, कितना समय लग जाता है. आप समय इन्वेस्ट कर सकते हैं तो और भी बढ़िया बात है, वो आपको कंस्ट्रक्ट मिल जाता है, उसके बाद टेनेंट ढूंढना, मेंटेनेंस, ये सब काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स अटैच होते हैं. तो काफ़ी सूझबूझ से ये मेरे हिसाब से सोचना चाहिए. इन द मीन टाइम क्योंकि डिजिटल एनवायरनमेंट में भी अब ये रीट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स आ गए हैं, तो एक माध्यम वहाँ से भी खुल जाता है.
2: जी, और वैसे भी जब आप फिजिकल अगर प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसको बेचना इतना आसान नहीं होता है. आज आप बेचना शुरू करें, हाँ, तो आपको शायद पूरा साल लग जाए उसे बेचने की कोशिश में. और चलिए देखते हैं सोने और चांदी का क्या हाल रहा. पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही. अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ट्रेजरी यील्ड में बढ़त से निवेशकों ने कम उत्साह दिखाया. MCX में अक्टूबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 1.9% की गिरावट के साथ 1,50,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. दिसंबर अनुबंध की चांदी के वायदा भाव में 3.8%

0: की कमी आई और ये 2,25,877 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना 3.7% गिरकर $4,162.30 प्रति ट्रॉय आउंस पर रहा। दिसंबर अनुबंध की चांदी 6.8% लुढ़क कर $60.41 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई।
1: एंड जय कुमार जॉइन्स अस फ्रॉम गाजियाबाद।
2: मार्केट बंदर टीम को नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: मैम मेरा सवाल है कि कई सारे इंडेक्स फंड हैं और मुझे कौन से इंडेक्स फंड में बेटर रिटर्न मिल सकता है?
3: जी कुमार जी, जो आपका सवाल है कि पैसिव फंड्स में आपको बेहतर रिटर्न कैसे मिल सकता है, तो ये जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि जो पैसिव फंड्स होते हैं वो अपने जो इंडेक्स जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे होते हैं, मतलब कि जो वो इंडेक्स जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है वो उन्हीं में ही इन्वेस्ट करेगा। तो वो आपको बस एक प्रॉमिस कर रहा होता है कि जो ये इंडेक्स रिटर्न देगा अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से वही आपको मिलेगा। तो बेहतर रिटर्न का जो एक फंडा है वो पैसिव्स में उस तरीके से नहीं चलता है। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग हमें इस तरीके से देखनी चाहिए कि हम एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं चाह रहे हैं, मतलब कि हम एक फंड मैनेजर को ये अपने पैसे इस तरीके से नहीं देना चाह रहे हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लें और आप उनकी सूझबूझ यूज़ करने के लिए उनको एक एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से कुछ कॉस्ट देते हैं जो आपके प्राइस में से कट हो जाता है। पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करने का तरीका आप ये देख सकते हैं कि आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स जो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पैसिव फंड्स होते हैं उनसे मोस्ट इन्वेस्टर्स का काम हो जाता है, बस वो आपको एक लार्ज कैप एक्सपोजर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब ये वो वाली कंपनीज हो जाती हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनके ग्रोथ पोटेंशियल बिल्कुल स्टेबल हैं। तो मेरे हिसाब से पैसिव्स का यूज़ केस इंडेक्स फंड्स का यूज़ केस वहाँ बनता है जहाँ पर लार्ज कैप एलोकेशन आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ढूंढ रहे हैं।
0: जी अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश कुमार, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
0: जी
4: मैडम, मैं म्यूचुअल फंड में हर वीक इन्वेस्ट करता हूँ एक लमसम करके, और मेजर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो निफ्टी में और हाइब्रिड में है करीब 25-25%, और बाकी का 4-5 म्यूचुअल फंड में है। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो स्लाइटली नेगेटिव में आ गया है, लेकिन निफ्टी वाला जो फंड है वो हैवीली नेगेटिव में आ गया है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे अभी मैं हर वीक एवरेज तो करूंगा तो वो निफ्टी में ही करना चाहिए या हाइब्रिड या लार्ज एंड मिड कैप बाकी फंड्स में करना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव हो? थैंक यू वेरी मच।
3: जी दिनेश जी, जो आपने तरीका बताया आपके इन्वेस्ट करने का, अगर वो तरीका आपको सूटेबल रहता है और आप जैसे कह रहे हैं कि आप हर वीक करते हैं और आप एवरेज आउट भी करते हैं, ये जो तरीका होता है इन्वेस्ट करने का ये काफ़ी डिपेंडेंट होता है अपॉन यू नो जो पर्सन इसको कर पा रहा है। जैसे मैं एज एन इन्वेस्टर अपने बारे में ये सोचती हूँ कि मैं जो एक ये टाइमिंग वाला एलिमेंट होता है वो इतना कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मार्केट आगे क्या करेगी। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ करा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्लाइटली नेगेटिव हो रहा है, बट निफ्टी जो कि एक पैसिव फंड है वो ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। मेरी राय ये रहेगी कि अभी फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का ही रुख कुछ ऐसा है कि आपको उतना ज़्यादा रिटर्न या उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस मार्केट में दिख नहीं रही है टुवर्ड्स दी अपसाइड। तो मेरी सलाह ये रहेगी आप अपना जो निवेश कर रहे हैं आप उसको जारी रखिए। इम्पॉर्टेंट बस यही रहेगा कि आगे जब आपको ये अमाउंट की ज़रूरत होती है और आपको अपना पोर्टफोलियो ऐसे दिख रहा है तभी आप कुछ चेंज करें, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो लार्जली जो मैं समझ पा रही हूँ निफ्टी 50 और हाइब्रिड फंड से बना हुआ है, तो ये एक काफी ऑलरेडी सूझबूझ से बनाया गया पोर्टफोलियो है।
0: जी और देखें अब क्या हाल रहा एफपीआईज का। सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से पैसे निकाले जबकि जुलाई और अगस्त में उनका रुख सकारात्मक था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एफपीआईज ने पिछले महीने 35,861 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। वैश्विक अनिश्चितता, यूएस बॉन्ड्स यील्ड में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से निवेशकों ने जोखिम से दूरी बनाए रखी। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से 45,537 करोड़ रुपए उन्होंने निकाले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: திரைப்பட பாடல் கேட்டீர்கள். நேரம் 7:50.
1: செய்தி கதம்பம்.

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत के निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों के कारण अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर तथा नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: திரைகணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே ஜயா பாரதி. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले. उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे. उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी. तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को. ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज

0: मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न। भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरते और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
4: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest.

0: बेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड।
1: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है, जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
3: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
3: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
5: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
3: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair

0: www.aiir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईटी नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
1: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and the Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to

0: ताल में धीमापन, चश्मे का नंबर, दवाइयों की संख्या, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक्सरे नहीं पकड़ता।
1: काम से रिटायर होने के बाद खाली हुआ समय, बच्चों के घर से चले जाने के बाद खाली हुआ कमरा, जीवन साथी के जाने के बाद खाली हुई कुर्सी, और धीरे धीरे कम होती बातचीत के बीच मन में पैदा हुई एक खामोशी।
0: हम अक्सर पूछते हैं उम्र कितनी हो गई, लेकिन शायद एक और सवाल पूछा जाना चाहिए, उम्र के इस पड़ाव पर मन कैसा है? क्योंकि उम्र बढ़ना केवल शरीर की कहानी नहीं है,
1: ये रिश्तों की कहानी है।

0: धीरे धीरे कम होती बातचीत के बीच मन में पैदा हुई एक खामोशी।
1: हम अक्सर पूछते हैं उम्र कितनी हो गई, लेकिन शायद एक और सवाल पूछा जाना चाहिए, उम्र के इस पड़ाव पर मन कैसा है? क्योंकि उम्र बढ़ना केवल शरीर की कहानी नहीं है,
0: ये रिश्तों की कहानी है, भूमिकाओं की कहानी है, पहचान की कहानी है और साथ ही बिछोह की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये सुने जाने की कहानी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में हम इसी अनकहे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: दिल्ली स्थित एक प्राइवेट ओल्ड एज होम से कुछ आवाजें और कुछ आवाजें सुदूर बिहार से।
2: मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इलाहाबाद से आए हैं। हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। म्यूजिक इज माय हॉबी, बोंगो कॉन्गो। हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा था वहाँ। इलाहाबाद में अब कोई है ही नहीं मेरा। हमारे दो डॉटर्स हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वाइफ डेथ हो गई।
3: माय नेम इज कृष्णा मिश्र। आई यूज्ड टू लिव विद माय डॉटर, बट शी हैज एक्सपायर्ड। आई केम हियर, आई फील वेरी लोनली। जनरली आई लाइक टू वॉच टीवी and like to storybook.
4: मेरा नाम है विजेंद्र सिंह शेखावत, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ चौदह से, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उनकी देख रेख जैसे रात बिरात हारी बीमारी होती है, 10 का मेरा स्टाफ है। नहीं ऐसे को नहीं, सभी आते हैं, एक दो दिन तो उनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ पर माहौल में डल जाते, सब खुश रहते, एक साथ बैठते हैं यहाँ पर, टीवी देखते हैं, न्यूज पेपर देखते हैं, यहाँ कीर्तन भाव होते हैं हफ्ता में एक दिन, कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वो डांस करते हैं, तमोला खिलाते हैं, अंताक्षरी करते हैं, गाने सुनाते हैं, तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता।
5: मेरा नाम बेबी सिन्हा है, मैं खगड़िया चित्रकूट नगर डीएवी रोड से हूँ। मैं यहाँ पर अपने लड़का के नाम से स्कूल खोली हुई हूँ। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ, तो स्कूल खोलने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे के बीच में रहूंगी, मैं खुश रहूंगी।
6: मेरा नाम श्यामा कांति सिन्हा है, मेरी उम्र 69 बरस है। मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ, अपने पति के साथ अकेले। मैं पहले सर्विस करती थी, अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अकेले दोनों रहती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, गिर जाती हूँ मैं भी, मेरा पति भी। पूरे दिन अकेले काटती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, कभी मोबाइल देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं जो दूर में रहती हैं, दो बेटियाँ, उनको आना भी मुश्किल है। मैं सोचो के कभी कभी रोना आता है, रोते रहती हूँ।

0: दस्तखत कर गई। मैं भुलावे कऊ बटन नहीं मल तारा, कौन से रास्ते जान किस मोड़ पर, कब बिछड़ कर मेरा बागपन रह गया। पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ, बस गई उम्र का आकलन रह गया। पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ, पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ।
1: भारत को लंबे समय तक युवा देश के रूप में देखा गया, लेकिन अब भारत की जनसंख्या की तस्वीर बदल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2021 में लगभग 10.1% अनुमानित था और 2031 में 13.1% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।
2: और इससे आगे की तस्वीर देखें तो UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 2022 के

0: 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8% होने का अनुमान है। यानी आने वाले दशकों में भारत में हर 5 लोगों में लगभग एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो सकता है।
1: ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव नहीं है, ये परिवार की संरचना बदलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बदलेगा, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बदलेगा और मानसिक स्वास्थ्य की हमारी समझ को भी बदलना होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम कितने लोगों को लंबी जिंदगी दे पाएंगे, सवाल ये भी है कि क्या हम उस लंबी जिंदगी को अर्थपूर्ण, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ बना पाएंगे। कई वर्षों तक भारत में और वर्तमान में दोहा कतर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
2: केयर सिस्टम है ना इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, वो अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है। केयर टेकर्स थे पहले के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं एक्चुअली। दूसरा है कि जो चीजें उनके अंदर होती है, एंजाइटी है, जो लोनलीनेस है, जो फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया से रिलेटेड चीजें होती है, जो उनका लॉस है, जिसमें लॉस ऑफ पार्टनर है, इस चीजों के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है तो उनका गुस्सा खुद की तरफ होने लगता है, लेकिन जब गुस्सा बाहर की तरफ होता है तो फिर वो फाइट की स्प्रिट में दिखता है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, स्पेस के लिए लड़ना, अपने इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए लड़ना, मतलब आई एम समथिंग, ये सेल्फ हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसको फैमिली वाले अलग वे में ले लेते हैं कि अच्छा इस उम्र में इतना ईगो दिखा रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली जिसको फैमिली वाले को समझना ये चाहिए कि नहीं, स्टिल ही इज हैविंग फाइटिंग स्प्रिट, द लाइफ इज देयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने साल तक जीते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इन सालों में जिंदगी कितनी थी, उस जिंदगी को भरने की जरूरत होती है एक्चुअली।
0: पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की पहचान कई भूमिकाओं से बनती है, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, गृहिणी, माता पिता, फिर एक दिन नौकरी या सेवा समाप्त होती है और उसके साथ सिर्फ वेतन या खुद की भूमिका ही नहीं ठहरती, कभी कभी दिनचर्या भी रुक जाती है, सहकर्मियों से रोज का मिलना रुकता है, निर्णय लेने की आदत बदलती है और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं कौन हूं।
1: ये प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य, सामाजिक संबंध और अपनी भूमिका का एहसास भी चाहिए।
0: अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार के बीच भी रहकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर सकता है और कोई व्यक्ति अकेला रहकर भी अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है।
3: मेरा नाम नसरत भगत है, मैं प्लस टू विद्यालय स्थानीय खगड़िया स्टेशन रोड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी अकेले घर में रहता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका थी, 2013 में एक्सपायर कर गई। 3 बच्ची है, तीनों बच्ची की शादी हो गई है। एक लड़का है, वह बीटेक करके बीपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलापन तो अनुभव होता है लेकिन साथी लोग हैं, इसलिए हम लोग का समय बड़ी आसानी से कट जाता है। थोड़ा अध्यात्मिक होने के कारण और विभिन्न संस्था से जुड़े रहने के कारण मेरा पर्सनल लाइफ ठीक है। बुनियादी केंद्र में भी हम लोगों का एक मनोरंजन होता है, मैं खुश हूँ अपने लाइफ से।
0: WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति लोनलीनेस का अनुभव करता है। वृद्ध लोगों में लगभग 11.8% लोनलीनेस का अनुमान दिया गया है। WHO ये भी रेखांकित करता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गजीविटी से है। और सोशल आइसोलेशन इससे अलग अवधारणा है। यहाँ व्यक्ति के सामाजिक संपर्कों और रिश्तों की संख्या और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: कभी कभी कितने लोग हैं ये समस्या नहीं है, बल्कि कितने लोग हैं जिनसे मन की बात की जा सकती है। यही वो जगह है जहाँ मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर नवाब

0: खान कहते हैं,
1: ये चीज जो स्टडीज से रिफ्लेक्ट हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पार्टनर के खोने से होता है, बाकी स्ट्रेस सब उसके नीचे आते हैं। इवन अगर जो लोग ओल्ड एज में रहते हैं, उनके दोस्त हैं और उनकी नजरों के सामने अगर कोई जाता है, दे फील वेरी वेरी सैड एंड बैड। अल्टीमेटली उनको ये फील होता है कि मेरा नंबर आ रहा है। जिस वक्त इंसान को ये फीलिंग होने लगे कि मेरा नंबर आ रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उसके पास से, तो इनोवेशन खत्म हो जाते हैं, एक दो जील जो जीत की होती है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। कि हर कम्युनिटी में उम्र के साथ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है वो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर ले, तब भी एक जो कम्युनिटी का रोल होता है, जो एक रिलेटिव्स का रोल होता है, जो एक दोस्तों का रोल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
2: भारत में पारिवारिक संरचना भी बदल रही है, माइग्रेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, परिवार छोटे हुए हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सोशल सपोर्ट की आवश्यकता कम नहीं होती।
0: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जब वृद्ध लोग अपने वयस्क बच्चों के साथ नहीं रहते तो लिविंग अरेंजमेंट में जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
2: यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, उम्र के बहुत आगे के पड़ावों पर विडोहुड और अकेलेपन का जोखिम महिलाओं में अधिक हो सकता है।
0: UNFPA की रिपोर्ट विशेष रूप से एजिंग के फेमिनाइजेशन की ओर ध्यान दिलाती है, यानी वृद्ध आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात और उनके साथ जुड़ी आर्थिक या सामाजिक वल्नरेबिलिटीज।
2: इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को एक समान समूह मानकर नहीं देखा जा सकता। एक अकेले रहने वाले पुरुष का अनुभव अलग हो सकता है, महिला का अलग, ग्रामीण बुजुर्ग का अलग, और शहर में अकेले रहने वाले वृद्ध का बिल्कुल ही अलग। और आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अनुभव भी आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
3: भारत में बुजुर्गों की मानसिक सेहत और इलाज से जुड़े आंकड़े गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के देश के सबसे बड़े सर्वे जो अब तक हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI LASI की रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की मानसिक सेहत से जुड़े ये आंकड़े मुख्य रूप से LASI वेव 1 रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 जनवरी 2021 को जारी किया था। ये आंकड़े देख लेने चाहिए, इससे हमें समस्या कितनी गंभीर है और कितना ज्यादा और काम किया जाना बाकी है इससे पता चलता है। तो आंकड़े इस तरह है कि भारत में लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मनोरोग से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद बुजुर्गों में ये आम समस्या हो गई है। आंकड़े देखें तो लगभग 41.7% बुजुर्गों ने किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन के लक्षणों की शिकायत की है, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 7.4 बुजुर्ग, ये संख्या बैठती है लगभग 88 लाख। अब महिलाओं में ये खतरा ज्यादा रहता है, बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की दर ज्यादा देखी गई है। इसकी जो खास वजह है वो एकाकीपन और आर्थिक निर्भरता है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण ज्यादा पाए गए हैं, क्योंकि वहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी अपेक्षा के हिसाब से कम है।
2: LASI के विश्लेषण में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में प्रोबेबल मेजर डिप्रेशन की प्रेविलेंस 9.4% तक दर्ज हुई, 60 से 64 वर्ष में ये 8.3% थी।
0: एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है, LASI में सिम्टम बेस्ड असेसमेंट से डिप्रेशन का स्तर सेल्फ रिपोर्टेड डायग्नोसिस की तुलना में कहीं अधिक पाया गया। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है, क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कम है या हम उसे पहचान कम रहे हैं? यही इस कार्यक्रम की केंद्रीय चिंता भी है।

0: क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बीमारी मानकर ही नहीं देखता तो वो मदद लेने कैसे जाएगा।
1: और अगर परिवार हर उदासी को उम्र का असर है कहकर टाल देता है तो पहचान और उपचार की संभावना और कम हो जाती है। रवि पाराशर।
2: भारत में लगभग 8% बुजुर्ग ऐसे हैं जो गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बीमारी की जानकारी नहीं है। ये भी एक गंभीर बात है। इसकी जो खास वजह है वो सामाजिक संकोच है। वो ये बताना नहीं चाहते दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, कि वे उन्हें कोई मानसिक समस्या है। एक और बड़ी वजह रिपोर्ट में पाई गई है कि मानसिक सेहत की जांच करने वाले और इलाज करने वाले डॉक्टरों की अभी कमी है। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार काम जारी रहेगा, ऐसा मुझे अपने अनुभव के आधार पर लगता है।
0: उम्र बढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य को केवल मानसिक बीमारी के संदर्भ में देखना भी अधूरा होगा। उम्र के साथ साथ फिजिकल लिमिटेशंस भी बढ़ती हैं। 60 प्लस के लोगों में लगभग 23.8% को कम से कम एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशन और लगभग 48% को इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कम से कम एक लिमिटेशन दर्ज की गई है।
1: अब जरा इसे एम्फैटिकली यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे की मदद चाहिए, जब चलने फिरने की स्वतंत्रता कम हो, जब सुनने या देखने में कठिनाई हो, जब दर्द लगातार साथ हो, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति की ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर नवाब खान।
3: बुजुर्गों में एक उम्र के बाद सुनने की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी विजन पे असर हो जाता है। और आप, हम लोग ये सब जानते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी पे भी असर पड़ता है। सब पे ना हो, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन पे ऐसा काम होता है। जब आपके सुनने की, देखने की, याद करने की क्षमता में कुछ चेंजेस हो जाए तो फिर ट्रस्ट का इश्यू आता है कि किस पे ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही होती है, तो मेमोरी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपने खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है तो फिर आपको याद भी नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर चैट की जरूरत होती है, तो प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। और इस हालत में बुजुर्गों को खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ चीजें आप रखें फिर भूल जाते हैं, या किसी ने कुछ बात कही तो हमको शक हो ऐसे शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है। दे स्टार्ट ओवर हियरिंग एवरीथिंग, दे स्टार्ट रेफरिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो पेनफुल हो जाता है बात के। और ये जेंडर से एक्चुअली चेंज नहीं होता है, दोनों जेंडर के लिए इक्वली इन चीजें एप्लीकेबल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बेसिकली आपके कॉग्निशन मतलब थिंकिंग पैटर्न, उससे रिलेटेड इमोशन और उससे रिलेटेड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को एक लॉजिकल वे में रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो ठीक है, तो मे बी ऐसी ही मेरी जिंदगी थी और ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है ये। तो इसलिए स्टार्ट ब्लेमिंग असर्थ, एक्चुअली हम ही इसको फेथ को ओन करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम ही ओन करते हैं और हमको ये करना ही होगा, बट सिचुएशन कुछ भी और हो सकती है। तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं उसको एक जेंटली मोर लॉजिकली चैलेंज करके रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट या पर्सन जो है, बोले आप, या ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो समझने के लिए कि इसका ये अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव कॉज भी हो सकता है।
0: मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, वो है आर्थिक सुरक्षा।
1: अब जरा सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ आय का स्रोत समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाए, दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़े और व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाए, तो आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव के बीच दूरी कितनी रह जाती है।
0: इसीलिए वृद्धावस्था का मानसिक स्वास्थ्य केवल काउंसलिंग का विषय नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और डिग्निटी का भी विषय है। यानी समाधान केवल ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से फोन पर बात करें, जरूरत इससे बड़ी है कि ऐसे मोहल्ले हों जहां बुजुर्ग सुरक्षित होकर निकल सके, ऐसे पार्क हों जहां बैठने की जगह हो, ऐसी सार्वजनिक

0: सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो जिसका उपयोग वृद्ध आसानी से कर सकें।
1: ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हों जहां वे केवल लाभार्थी नहीं सहभागी हों, और ऐसी सामाजिक गतिविधियां हों जिनमें उम्र बाधा न बने, क्योंकि किसी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते उसकी मानसिक सेहत का हिस्सा हैं।
0: एक सवाल और है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी के उपचार के रूप में देखा जाए या उसमें सोशल पार्टिसिपेशन, लोनलीनेस प्रिवेंशन, कम्युनिटी सपोर्ट, काउंसलिंग, ऑटोनॉमी और डिग्निटी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अगर अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो लोनलीनेस प्रिवेंशन भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का एक हिस्सा होना चाहिए।
1: और अगर रिटायरमेंट आइडेंटिटी को बदलना है तो मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी एजिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
2: सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रमों में रह रहे हों। और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि वहां के जो प्रधान होते हैं और सरपंचों को, उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, इनसे सीधे जोड़ा जाना चाहिए। और शहरी इलाकों में जो सबसे निचली इकाई है, मोहल्लों के वार्डों के जो पार्षद हैं, उनके जिम्मे ये काम किया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए बल्कि। और कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ करना सही रहेगा। आयुष्मान भारत योजना, ये योजना ऐसी है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को, देश भर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें मानसिक समस्याओं का इलाज भी शामिल है। दूसरी योजना है टेली मानस, ये मानसिक सेहत से जुड़े परामर्श के लिए, सलाह मशवरे के लिए सरकार की 24 घंटे सातों दिन चलने वाली हेल्पलाइन सेवा है। ये बुजुर्ग इस पर कॉल करके मुफ्त मानसिक सलाह ले सकते हैं। इसके नंबर दो हैं, एक है 14416 और दूसरा नंबर है 1800-89-14416। और अच्छी बात यह है कि यह सेवा जो है वो हिंदी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिना संकोच किए आप फोन घुमाइए, अगर दूसरों को नहीं बताना चाहते, अकेले में सलाह लेना चाहते हैं, अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो फोन पर बात कर सकते हैं। एक और नंबर है जिसको एल्डर लाइन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वो है 14567। ये आसानी से याद भी किया जा सकता है, 14567। इस पर कॉल करके बुजुर्गों को न केवल मानसिक मदद मिलती है, मानसिक समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है, बल्कि पेंशन, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं में भी ये यहाँ पर सलाह मशविरा और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी सरकार ने जगह जगह स्थापित किए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर बुजुर्गों को बुनियादी सलाह मशविरा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं यहाँ इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, इसके तहत जिलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। वयोवृद्ध जन कल्याण योजनाएं भी हैं, सरकार चलाती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें चलाता है। इसके तहत डे केयर सेंटर, आश्रय और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, अगर घर पर आपको परामर्श चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सभी हेल्पलाइन सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में मानसिक बीमारी के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में एक कानून बनाया गया था, और आयुष्मान भारत यानी पीएम जय के नियमों के तहत बेहद सुगम और मरीज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है।
0: आंकड़े जरूरी हैं, वो हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि किसी शाम अकेले कमरे में बैठना कैसा लगता है, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहली रात कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद सोमवार और रविवार में फर्क क्यों मिट जाता है, या जब परिवार कहता है आप आराम कीजिए तो कभी कभी उस वाक्य के पीछे छुपा संदेश कैसा महसूस हो सकता है।
1: इसी

0: ये इस वर्ष की थीम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड रियल वॉइसेस रियल चेंज एक महत्वपूर्ण दिशा देती है। सिर्फ लोगों के बारे में बात मत कीजिए, लोगों को बोलने की जगह दीजिए। मन के मौसम बदले जा सकते हैं। उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन अकेलापन हमेशा अनिवार्य नहीं।
1: शायद उम्र का सबसे कठिन मौसम वो नहीं होता जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है। सबसे कठिन मौसम वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि उसकी जरूरत कम हो गई है, जब बातचीत उसके बारे में होती है लेकिन उससे नहीं, जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती, जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं, जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं, और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है सुनने वाला कोई नहीं।
0: हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत तेजी से एजिंग सोसाइटी बन रहा है। वे बताते हैं कि डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वास्तविक और गंभीर चिंताएं हैं।
1: लेकिन एक आंकड़ा कभी किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं होता, इसलिए शायद अब समय है कि हम सवाल बदलें। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या परेशानी है, कभी पूछें आप इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं।
0: ये पूछने की बजाय आपको किस चीज की जरूरत है, कभी पूछें आप अभी भी क्या करना चाहते हैं।
1: और ये मान लेने के बजाय कि उम्र के साथ मन के रंग फीके पड़ जाते हैं, उसे फिर से रंगने के लिए एक जगह बनाते हैं, क्योंकि मन भी मौसम की तरह है, उसमें पतझड़ आता है तो वसंत भी आ सकता है, कभी बादल घिरते हैं तो धूप भी लौटती है।
0: जरूरत सिर्फ इतनी है कि खिड़कियां बंद न कर दी जाएं, किसी के मन की खिड़की खुली रहे, कोई वहां से आती आवाज तो सुन सके, रुके, बात करे और कहे कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ।
1: क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी सुना जाना है। किसी उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता, हर उम्र में एक नया मौसम आने की गुंजाइश हमेशा रहती है।
0: और ये नया मौसम हर किसी के जीवन में आए, ऐसी हमारी कामना है।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, वाचन स्वर हर्ष रंजन, नवोदिता मिश्रा, रमेश शर्मा की गीत पंक्तियों को स्वर दिया ओम प्रकाश मिश्र ने, प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और सुमन ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
4: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: Really is a point of convergence.
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय

0: शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों की पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले के में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा है कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का प्रभाव अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वितीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का आदर्श आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इसमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थत्तन चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वे अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नगोया में आधिकारिक समापन हो गया। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू डांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया और भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तथा 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक सहित कुल 85 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: Dr. Jaishankar has emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. The External Affairs Minister stressed that at a time when much of the world

0: सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया ने संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ के हवाले से बताया कि रणनीतिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खुलने के बारे में ईरान की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट और दृढ़ है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। इस संघर्ष से ही आवश्यक हो गया है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करे। उन्होंने कहा कि देश पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
3: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तईस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ओपेक प्लस के 7 देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने नवंबर में भी सितंबर 2026 वाले उत्पादन कोटे को जारी रखने का फैसला किया है। यह फैसला 4 अक्टूबर को हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक में इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा की। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक चिंताएं और राजनीतिक ध्रुवीकरण प्रमुख मुद्दे हैं। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के 45 वर्षीय बेटे और सीनेटर फ्लैवियो बोल्सोनारो अपने परिवार के दक्षिणपंथी आंदोलन को वापस सत्ता में लाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य भागों पर हमले तेज करने की चेतावनी दी है। रूस के तेल शोधन कारखानों पर हमले तेज करने के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बयान के बाद ये चेतावनी आई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की सेना

0: यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, रक्षा उद्योगों और संबंधित बुनियादी ढांचों पर हमले तेज करेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ लंबा मार्च शुरू किया। सरकार के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद ये कदम उठाया गया है। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वज वाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
1: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। यमन ने साना और सदा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले किए। हूती ने रियाद में आरामको तेल संयंत्र पर हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ 4थे स्थान पर रहा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says, changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Iran says, Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. Yemeni forces launch strikes on Houthi-controlled Sana'a and Sada as rebel group claims to hit Aramco oil facility in Riyadh. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India signs off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said, international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि

0: आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3 लाख घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मिथ मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मिथ तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jayashankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said, it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China, and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology, comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was present on the occasion. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal.

0: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
2: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
1: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट। ब्रेंट क्रूड राइजेस नियरली 5%, WTI क्रूड ड्रॉप्स अराउंड 1.5%. In bullion market, gold and silver prices declined last week, and foreign portfolio investors turned net sellers of Indian equities in September, infuse over 9,600 crore rupees through primary market.
2: पिछले हफ्ते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में मिलाजुला रुख, ब्रेंट क्रूड लगभग 5% उछला, WTI क्रूड करीब 1.5% गिरा। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक गिरावट, और सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों की बिकवाली

0: की प्राथमिक बाजार में 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया।
1: And may we just once again remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Global crude oil prices displayed mixed trend this week. Brent crude December futures rose 4.9% to settle at $102.25 per barrel. West Texas intermediate crude November futures dropped 1.4% to end at $91.11 per barrel over the week. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for updates on latest developments in West Asia.
2: Hi. The first thing in West Asia is that today the OPEC plus, seven OPEC plus countries have decided to keep November production unchanged. That means we might not see any additional plant supply increase. Secondly, we've seen some kind of escalation on the Saudi-Yemen Houthi front. Houthis had yesterday claimed that they attacked Riyadh, specifically the Aramco facility. While Saudi Arabia has rejected these claims, any potential danger to Saudi Arabia's oil infrastructure may put pressure on oil prices in the future. Hormuz continues to remain a big oil market risk. Even today, there was report of an unidentified projectile hitting an oil tanker. Now, these geopolitical tension is being counterbalanced by G7's decision to coordinate the release of 100 million barrels of oil and refined products, which may help ease the pressure. But I think the volatility will remain for some days.
0: धन्यवाद मनीष शिवा। ये थे हमारे संवाददाता मनीष शिवा, और जैसा कि उन्होंने अभी बताया, ओपेक प्लस के सात देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने नवंबर में भी सितंबर 2026 वाले उत्पादन कोटे को जारी रखने का फैसला किया है। ये फैसला 4 अक्टूबर को हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक में इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा की। संयुक्त मंत्री स्तरीय निगरानी समिति JMMC की 68वीं बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। समिति ने चेतावनी दी कि हमला होने या आपूर्ति में रुकावट से बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तो ये बहुत सारी खबरें हैं दुनिया में अस्थिरता की, और देखते हैं कि अब कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं हमारे। मेरठ से हरीश लाइन पर है। हरीश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मैं ये कह रहा था, मेरी म्यूचुअल फंड में 70,000 to 80,000 की सिप चल रही है और मेरा टाइम होराइजन 10 to 12 इयर्स है सर, तो क्या सही है सर मेरा म्यूचुअल फंड में? मैंने स्मॉल कैप में और मिड कैप में और फ्लेक्सी कैप में कर रखा है, एक SBI कॉन्ट्रा फंड ले रखा है सर।
4: हरीश जी, आपके टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग और आपकी जो कैटेगरी सिलेक्शन है ये एकदम अलाइंड है। फोकस आपका इस पूरे समय में इस पे रहना चाहिए कि जो आपने मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन रखी हुई है वो एलोकेशन एक सीमित तरीके से आपके कोर पोर्टफोलियो के अराउंड बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें अपना जो परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर है पोर्टफोलियो का उसको 30% से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि लंबे बेहतर रिटर्न देने की ये आपको गारंटी मतलब संभावना देते हैं। बट होता क्या है कि इनमें जो एक रिस्क लेवल है वो भी काफ़ी हाई रहता है, तो हमें अपना एक कोर पोर्टफोलियो रखना चाहिए, जैसे आपने बताया फ्लेक्सी कैप कॉन्ट्रा टाइप की कैटेगरी से, और मिड और स्मॉल कैप जो एक अग्रेसिव ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करता है वो एक एक लिमिटेड तरीके से रहे तो ये काफ़ी सही रहता है। आप एक चीज़ का ध्यान ये रख सकते हैं कि आप थोड़ा सा पोर्शन डेट एलोकेशन में रख सकते हैं ताकि आपकी एक एसेट एलोकेशन इस तरीके से बनी रहे, आप जब मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा हो रहे हों और आपको डर की संभावना लगती हो, तब जो आपकी डेट एलोकेशन होती है वो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो इसका आप ध्यान

0: लीजिए, अपनी SIPs को कंटिन्यू रखिए। कोई भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर होती है तो उससे अपने SIPs को स्टॉप या पॉज ना करें।
1: जी, आपने जैसा अभी बताया वो स्मॉल कैप की हालत, ये कई जगह देखा है, क्योंकि लोग अक्सर एजेंट्स के पास या एडवाइज़र्स के थ्रू करते हैं, या कई बार लोग ऐसे सलाह दे रहे होते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे होते हैं कि आप इसमें डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, और कई बार पोर्टफोलियो देखते हैं कि आप 60-70% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं। थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगता है, जैसे अभी पिछले कुछ महीने से शायद अच्छा लग रहा हो, किसी ने अभी एक आध साल में किया होगा तो उसको बढ़त भी कुछ दिख रही होगी, लेकिन आगे के लिए क्या करें?
0: बिल्कुल, आगे के लिए बस ध्यान ये देना चाहिए, ये जो इतना अग्रेशन जब बिल्ड हो जाता है पोर्टफोलियो में, तो मार्केट जब, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट जब हरी दिख रही होती है तब ये वाले फंड्स आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। इसे हम एक तरीके से परफॉर्मेंस चेजिंग कह देते हैं। वो ना करते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका टेम्परमेंट है वैसा कि आप ये स्मॉल कैप मिड कैप की इतनी ज़्यादा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो आप बिल्कुल वो करिए, पर ध्यान इस बात का रखना चाहिए
1: कि उठा सकते हैं,
0: कितना रिस्क उठा सकते हैं, और रिस्क एक ही बार आपको दस्तक देती है अपने पोर्टफोलियो में, और जब देती है तब आपको रियलाइज होता है कि उतना ज़्यादा सही नहीं था। इसीलिए जैसे अभी मैं हरीश जी को बता रही थी कि आप डेट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखिए और अपना रिस्क आपको जानना चाहिए, उससे पहले, इन्वेस्ट करने से पहले जो अपने एक पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगर आपका गोल ही आपके 3 साल का गोल है तो आप मिड स्मॉल कैप छोड़िए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास ही सूटेबल नहीं है। जैसे हरीश जी ने बोला उनका 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, इस होराइजन के लिए आप स्मॉल कैप मिड कैप एलोकेशन चाहे तो 30-40 रख सकते हैं,
1: बस 30-40, उससे ज्यादा नहीं,
0: मतलब फॉर स्टार्टर्स आपको 20-25 तक ही उसको
1: 20-25 ही रखना चाहिए जी, नए निवेशकों के लिए जी।
2: वेल, लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर व्हाट हिज क्वेश्चन इज। योगेश जी, सवाल पूछें।
3: जी नमस्कार आप सभी को, मेरा एक सवाल है और एक क्लैरिफिकेशन है। जो मैंने पिछली बार सवाल पूछा था कि सारा कुछ हमारा डिजिटल एसेट में कन्वर्ट होता जा रहा है, उसका रीजन ये था कि रियल एस्टेट अपने आप में एक फिजिकल एसेट क्लास होता था, बट उसको रीच की वजह से डिजिटाइज कर दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। दूसरा जो मेरा आज का सवाल है वो ये है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को ऐड करने का सही तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा पोर्टफोलियो ही 1 करोड़ से कम का है, अगर हम उसमें रियल एस्टेट ऐड करते हैं तो जैसे ही हम ऐड करेंगे वो एक मेजर पोर्शन खा जाएगा पोर्टफोलियो का अपने आप में, जबकि हमारा गोल है कि 20% से ज्यादा रियल एस्टेट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो क्या अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक SIP करें एक मिड या लार्ज मिड कैप फंड में और उसको एक रियल एस्टेट का लेवल कर दें, फिलहाल के लिए मेंटल लेवल दे दें रियल एस्टेट, और जब वो अपने आप में एक अच्छा अमाउंट हो जाए तो फिर उसको हम रियल एस्टेट के लिए यूज करें।
0: योगेश जी, मुझे आपका वो सवाल याद है जिस पे अभी आपने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा। मैं आपको एक थॉट देना चाहूँगी कि जो रियल एस्टेट का जो एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल रियल एस्टेट आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर आपके दिमाग में इस तरीके से है, तो एज एन एसेट अगर आपको वो चाहिए तो आपको कोई भी कुछ भी कहे वो आपको लगेगा नहीं कि उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए। बट मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में आजकल इनडायरेक्ट, मतलब नॉट फिजिकल तरीके से जो रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिलता है वो इतना इजी हो चुका है, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। आप कह रहे हैं अगर वो कैपिटल रिक्वायरमेंट बन भी जाती है तो आप फिर उसको फिजिकली खरीदें, बट बियॉन्ड दैट जैसे और दो प्रॉब्लम्स रहती हैं फिजिकल रियल एस्टेट में, विच इज़ इलिक्विडिटी, या फिर जो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जैसे आपने बोला कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो इमिडिएटली काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो ये कुछ रिस्क रहेंगे ही जो फिजिकल रियल एस्टेट की जहाँ तक बात है। फिर भी रियल एस्टेट का एक्सपोजर जो रीट्स के माध्यम से आजकल मिलता है, म्यूचुअल फंड्स में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपको एक रीट्स की एक एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसमें क्योंकि वो एलोकेशन लिमिटेड रहती है, हाल फिलहाल में 2-3 नए फंड्स आए हैं विच आर फोकस्ड ऑन दिस, वो रीट्स ओरिएंटेड इंडेक्स फंड हो जाते हैं, तो क्योंकि वो पैसिव फंड्स हैं आपको इतना पता होता है कि वो कौन से रीट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी लिस्टेड रियल एस्टेट हैं जिसका आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मेरी नज़र में आप उसको एक म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको सहानुभूति देता है कि ये मुझे एक रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल रहा है। लिमिटेड रीट्स अवेलेबल हैं आज की तारीख में हमारी लिस्टेड मार्केट में, बट क्योंकि ये इंडेक्स है तो ये

0: रियल एस्टेट कंपनीज का भी आपको एक्सपोजर देगा और रीट्स का भी जो आप चाह रहे हैं वो एक्सपोजर आपको मिल जाएगा।
1: जी, रियल एस्टेट के लिए अब तक भारतीय निवेशकों में काफ़ी प्यार बना हुआ है,
0: बिल्कुल
1: ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर हम इतिहास में जाएं, अगर इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाएं, तो कई बार हम देखते हैं जो काफ़ी जानकार एडवाइजर्स हैं, सलाहकार हैं, विद्वान हैं, इवन मुझे नील फर्ग्यूसन की किताब पुरानी याद आ रही है, उसमें भी उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था, कैसे बाजार गिरा था और सब कुछ बर्बाद हुआ था, कई शहर खाली हो गए थे। तो रियल एस्टेट में रिस्क जब आता है और जब गिरावट होती है तो बुरी तरह से वो बर्बाद करके जाता है।
0: वो बात भी है, और जहाँ तक मतलब मैं योगेश जी की बात समझ पा रही हूँ, रियल एस्टेट के लिए आपका एक आपका एक फेवरेटिज्म आ जाता है, क्योंकि वो जो फिजिकैलिटी अटैच होती है कि ये
1: है हमारे पास
2: समथिंग पैल्पेबल।
0: एग्जैक्टली, तो कभी कभी वो एक मेरे नज़रिए में नुकसानदेह बात हो जाती है, क्योंकि आजकल के टाइम्स में जहाँ पे बिल्डर्स आपको बेच देते हैं पर उसका जो उसको जो बनाना है, जो ग्रोथ है, कितना समय लग जाता है, आप समय इन्वेस्ट कर सकते हैं तो और भी बढ़िया बात है, वो आपको कंस्ट्रक्ट मिल जाता है, उसके बाद टेनेंट ढूंढना, मेंटेनेंस, ये सब काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स अटैच होते हैं, तो काफ़ी सूझबूझ से ये मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। इन द मीन टाइम, क्योंकि डिजिटल एनवायरनमेंट में भी अब ये रीट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स आ गए हैं, तो एक माध्यम वहाँ से भी खुल जाता है।
1: जी, और वैसे भी जब आप फिजिकल अगर प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसको बेचना इतना आसान नहीं होता है। आज आप बेचना शुरू करें, हाँ, तो आपको शायद पूरा साल लग जाए उसे बेचने की कोशिश में। और चलिए देखते हैं सोने और चांदी का क्या हाल रहा। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ट्रेजरी यील्ड में बढ़त से निवेशकों ने कम उत्साह दिखाया। एमसीएक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 1.9% की गिरावट के साथ 150,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दिसंबर अनुबंध की चांदी के वायदा भाव में 3.8% की कमी आई और ये 225,877 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना 3.7% गिरकर $4,162.30 प्रति ट्रॉय आउंस पर रहा। दिसंबर अनुबंध की चांदी 6.8% लुढ़क कर $60.41 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई।
2: एंड जय कुमार जॉइन्स अस फ्रॉम गाजियाबाद।
3: मार्केट बंदर टीम को नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
3: मैम, मेरा सवाल है कि कई सारे इंडेक्स फंड हैं और मुझे कौन से इंडेक्स फंड में बेटर रिटर्न मिल सकता है?
0: जी कुमार जी, जो आपका सवाल है कि पैसिव फंड्स में आपको बेहतर रिटर्न कैसे मिल सकता है, तो ये जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि जो पैसिव फंड्स होते हैं वो अपने जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स का वो जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे होते हैं, मतलब कि जो वो इंडेक्स जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है वो उन्हीं में ही इन्वेस्ट करेगा, तो वो आपको बस एक प्रॉमिस कर रहा होता है कि जो ये इंडेक्स रिटर्न देगा अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से वही आपको मिलेगा। तो बेहतर रिटर्न का जो एक फंडा है वो पैसिव्स में उस तरीके से नहीं चलता है। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग हमें इस तरीके से देखनी चाहिए कि हम एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं चाह रहे हैं, मतलब कि हम एक फंड मैनेजर को ये अपने पैसे इस तरीके से नहीं देना चाह रहे हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लें और आप उनकी सूझबूझ यूज़ करने के लिए उनको एक एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से कुछ कॉस्ट देते हैं जो आपके प्राइस में से कट हो जाता है। पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करने का तरीका आप ये देख सकते हैं कि आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, जो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पैसिव फंड्स होते हैं, उनसे मोस्ट इन्वेस्टर्स का काम हो जाता है, बस वो आपको एक लार्ज कैप एक्सपोजर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब ये वो वाली कंपनीज हो जाती हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनके ग्रोथ पोटेंशियल बिल्कुल स्टेबल हैं। तो मेरे हिसाब से पैसिव्स का यूज केस, इंडेक्स फंड्स का यूज केस वहाँ बनता है जहाँ पर लार्ज कैप एलोकेशन आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ढूंढ रहे हैं।
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश कुमार, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: जी
4: मैडम, मैं म्यूचुअल फंड में हर वीक इन्वेस्ट करता हूँ एक लमसम करके, और मेजर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो निफ्टी में और हाइब्रिड में है करीब 25-25%, और बाकी का 4-5 म्यूचुअल।

0: फंड में है तो अभी मेरा पोर्टफोलियो स्लाइटली नेगेटिव में आ गया है, लेकिन निफ्टी वाला जो फंड है वो हैविली नेगेटिव में आ गया है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे अभी मैं हल्की कैवरेज तो करूंगा तो वो निफ्टी में ही करना चाहिए या हाइब्रिड या लार्ज एंड मिड कैप बाकी फंड्स में करना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव हो? थैंक यू वेरी मच
1: जी। दिनेश जी, जो आपने तरीका बताया आपके इन्वेस्ट करने का, अगर वो तरीका आपको सूटेबल रहता है और आप जैसे कह रहे हैं कि आप हर वीक करते हैं और आप एवरेज आउट भी करते हैं, ये जो तरीका होता है इन्वेस्ट करने का ये काफ़ी डिपेंडेंट होता है अपॉन यू नो जो पर्सन इसको कर पा रहा है। जैसे मैं एज एन इन्वेस्टर अपने बारे में ये सोचती हूँ कि मैं जो एक ये टाइमिंग वाला एलिमेंट होता है वो इतना कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मार्केट आगे क्या करेगी। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ करा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्लाइटली नेगेटिव हो रहा है बट निफ्टी जो कि एक पैसिव फंड है वो ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। मेरी राय ये रहेगी कि अभी फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का ही रुख कुछ ऐसा है कि यू नो आपको उतना ज़्यादा रिटर्न या उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस मार्केट में दिख नहीं रही है टुवर्ड्स द अपसाइड। तो मेरी सलाह ये रहेगी आप अपना जो निवेश कर रहे हैं आप उसको जारी रखिए। इम्पॉर्टेंट बस यही रहेगा कि आगे जब आपको ये अमाउंट की ज़रूरत होती है और आपको अपना पोर्टफोलियो ऐसे दिख रहा है तभी आप कुछ चेंज करें, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो लार्जली जो मैं समझ पा रही हूँ निफ्टी 50 और हाइब्रिड फंड से बना हुआ है तो ये एक काफ़ी ऑलरेडी सूझबूझ से बनाया गया पोर्टफोलियो है
2: जी। और देखें अब क्या हाल रहा FPIs का। सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से पैसे निकाले जबकि जुलाई और अगस्त में उनका रुख सकारात्मक था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार FPIs ने पिछले महीने 35,861 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। वैश्विक अनिश्चितता, US बॉन्ड्स यील्ड में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से निवेशकों ने जोखिम से दूरी बनाए रखी। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से 45,537 करोड़ रुपए उन्होंने निकाले लेकिन प्राथमिक बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले महीने भी पैसे डाले। सितंबर में उन्होंने प्राथमिक बाजार में 9,676 करोड़ रुपए का निवेश किया। ऋण बाजार पर भी विदेशी निवेशकों ने बिकवाली का दबाव बनाए रखा। सितंबर में उन्होंने FAR के जरिए 10,431 करोड़ रुपए निकाले। जनरल लिमिट रूट से 5,247 करोड़ और VRR से 5,049 करोड़ रुपए निकाले।
3: Sneha, we just heard these figures about the foreign portfolio investors. We'd like to have your view on this. What does this mean in terms of the mutual fund industry?
1: Right. So, as we've always been discussing that, you know, it is very good to know, to be on top of this kind of development that is happening because you get to know what kind of perspective exists for the home country outside Correct. The home country. But for specifically for mutual fund investors or any retail investor, you know, my view is that these developments should never be taken as a personal cue to pause or stop your SIP.
3: Correct.
1: Because we take it so close to our hearts that we immediately start taking investment decisions. And right. like we have been discussing, your personal circumstances is or are what defines, you know, your investing habits or your investment decisions. So if everything at your personal level is doing fine, your risk appetite is very much where your funds are and your asset allocation is as you had started out with, then it's good to know, but continue with your SIPs and be disciplined about it.
3: Right. Meanwhile, Atanu Saha joins us from Kolkata. Atanu ji, sawal puche.
4: Yes. Good evening to everybody. So, ma'am, my question is related with how do we invest? Investment a habit which you are inside. The investment habit is also important. How do we maintain it? One point. And another one, ma'am, arbitrage fund, ma'am, in its performance. Thank you.
1: Right. So, Mr. Atanu, if I have been able to understand your question, you are saying what kind of investment habits needs to be imbibed while, you know, let's say building your portfolio or to continue with the kind of portfolio you've built. So, my two cents on that would be, as we have been discussing, you judge your risk appetite, you judge your investment horizon for a time horizon greater.

0: bond yields. Last week, the benchmark US 10-year Treasury yield hit 5.34%, its highest level in 24 years. Higher yields can create more investment competition for equities and pressure stock valuations.
1: और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। वे आज नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे। बाद में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष वोल्फगैंग इशिंजर और जर्मनी के विदेश मंत्रालय के सचिव बर्नहार्ड कॉच के साथ बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि आने वाले दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि तेज रहेगी और जनांकिकी वृद्धि दर का स्तर बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। आज वक्त इतना ही है। स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
0: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट। ब्रेंट क्रूड राइजेस नियरली 5%, WTI क्रूड ड्रॉप्स अराउंड 1.5%। इन बुलियन मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस डिक्लाइन लास्ट वीक एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट सेलर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज इन सितंबर, इन्फ्यूज ओवर 9,600 crore rupees through primary market. And that's all in today's edition of Market Mantra. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: நேரம் 11:40. ஆகாஷ்வாணி, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி திரைகானம். முதல் பாடல் அவளுக்கென்று ஒரு மனம் படத்திற்காக தி சுசீலா குரலில்.

0: இதுவரை திரைகானம் கேட்டு ரசித்தீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है. नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है.
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं. भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है. वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं. इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ. दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना. यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है.
2: Really is a point of convergence.
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है. उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं. उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी. नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे. उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं. श्री जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं. इनमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए

0: दिल्ली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि इसमें तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi yesterday. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Dr. Jaishankar termed the Russia-Ukraine conflict as unfortunate, saying that India's position has been very clear that it would like to see an end to this conflict. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district yesterday. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology, comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was also present on the occasion. India and Canada will kick off the fifth round of negotiations today for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, in Ottawa, as both sides aim to conclude the trade pact by the end of 2026. The five-day round led by the chief negotiators of the two countries will continue till 9th of this month. The previous round concluded in New Delhi on 18th of last month.

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: बहुत धन्यवाद आपका।
2: कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
4: There are countries who are emerging.
5: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: Really is a point of convergence.
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले का नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। उन्होंने भदोही में एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 1,340 करोड़ रुपए से अधिक की

கொண்டு இயேசு புத்தன் வரை எல்லோர் மதங்களும் எங்கை வை.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कल 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस भूमि पर किसी भी प्रकार की अनुचित और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के नेता अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राष्ट्र विरोधी ताकतें पूरे देश

வாயுள்ள ஆட்களுக்கும் வசதியுள்ள பேர்களுக்கும் ஓஹோ

0: நேயர்கள், இதுவரை கேட்ட இந்த நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முஹம்மது ஜுபேர். विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: Really is a point of convergence.
1: उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 23 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये चुनाव स्नातक और शिक्षा निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों के लिए होगा। भाजपा ने पुणे संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से स्मिता जाधव, नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सुधाकर कोहले और पुणे संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कौस्तुभ गावड़े को उम्मीदवार घोषित किया है। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों तक मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान जताया है। रायगढ़ और रत्नागिरी में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। हालांकि कल से कोंकण क्षेत्र में मौसम के ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट और सिंधुदुर्ग में बुधवार और बृहस्पतिवार को हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गढ़चिरौली के कुछ इलाकों में भी गरज चमक के साथ

0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति परमेलन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: उन्होंने कहा है कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर इंटेलिजेंस फोर्स नामक नई सरकारी कार्यबल की घोषणा की है। यह कार्यबल संघीय सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़े प्रयासों के बीच समन्वय का काम करेगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहली अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक यात्रा को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार होगा जब डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए माल की खेप जलमार्ग से भेजी जाएगी। सड़क परिवहन और जलमार्ग राजमार्ग मंत्रालय आज से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले का नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। उन्होंने भदोही में एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। भारतीय बैडमिंटन टीम आज मिस्र के काहिरा में आयोजित BWF विश्व जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत का मुकाबला आज अल्जीरिया से और कल पेरू से होगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज और चमक के साथ वर्षा तथा बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़चिरौली के कुछ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மை மனோஜ். स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलिन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीला

0: और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर खतरा था, उस समय रूस ने कई तरह से भारत का साथ दिया। नई दिल्ली में हुए 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश भारत के पड़ोस में सैन्य शासन का समर्थन कर रहे थे, तब रूस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंधों पर इस ऐतिहासिक विरासत का गहरा प्रभाव है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। आज़ादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा राज्य मंत्री अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डॉक्टर सिंह इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र को भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व है, जिन्होंने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।